FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948, श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस होगा सुबह 9:10 पर, कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:20 पर। गाने पुराने जमाने के, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा 10:00 और उसके तुरंत बाद 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा आज शाम 4 बजे और खेतीबाड़ी का प्रसारण होगा शाम 4:30 पर। युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:05 और 5:30 का समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का।

0: श्रोताओं, शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। उसके बाद 7:45 पर होंगे देशभक्ति फिल्मी गीत, फिल्मी गज़लें और कव्वालियों का प्रसारण होगा रात 8 बजे, और रात 8:30 का समय रहेगा गाने नए जमाने के। रात 9 बजे सुनिए सुगम संगीत, जिसमें गैर फिल्मी गीत और गज़लें सुनवाई जाएंगी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे, और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ वर्चुअल बैठक में ये स्वीकृति दी। श्री चौहान ने इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 216 करोड़ रुपए और कृषि उन्नति योजना के तहत 124 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। राजस्थान के लिए वर्ष 2026-27 में 849 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509 करोड़ 62 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि किसानों को समय पर और सुगमता से ऋण सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे आज श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन करेंगे। श्री शर्मा धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे आज ही बीकानेर के मेघासर में मेघोजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण और विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और ड्रोन शो में शामिल होंगे। शाम को वे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कल ध्वजारोहण करेंगे और युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 में युवाओं से बातचीत करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि आज के ड्रोन शो में एक साथ 600 ड्रोन उड़ान भरेंगे। इसके माध्यम से कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और राष्ट्र से जुड़ी आकर्षक आकृतियां बनाई जाएंगी। स्वाधीनता दिवस से पहले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदेश भर

0: में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सभी जिलों में विभाजन विभीषिका से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियों को दर्शाया जा रहा है। पाली में कैंडल मार्च और स्मृति संध्या रखी गई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में लगी प्रदर्शनी में वर्ष 1947 में हुए विभाजन की पीड़ा और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है।
1: जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, 2 मिनट का मौन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कैंडल मार्च भी आयोजित किए जाएंगे। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा और संघर्ष से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: इस बीच हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में परवान पर है। सरकारी कार्यालयों, स्मारकों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा थीम पर सजाया गया है। सवाई माधोपुर में जगह जगह तिरंगा कैनवस लगाए गए हैं, जिन पर लोग हस्ताक्षर कर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के संदेश लिख सकते हैं। वहीं हर ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों का सम्मान किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति से काम कर रही है। वे कल जयपुर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का सेतु बनकर सुरक्षित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने सीएलजी बैठकों को क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा का प्रभावी मंच बनाने को कहा। साथ ही असामाजिक तत्वों, नशे के कारोबार, महिला और बाल सुरक्षा, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनाव से जुड़ी सूचनाएं समय पर पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की।
2: आज हमको चाहिए कि जनता के अंदर विश्वास हो, पुलिस का विश्वास हो, सीएलजी के सदस्यों का विश्वास हो और अपराधियों में भय हो कि मेरे पड़ोस में सीएलजी का सदस्य रहता है, अगर मैं थोड़ा भी कहीं आगे बढ़ा तो मैं जेल के अंदर जाऊंगा, ये उसको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे अपराध हो या बड़े अपराध हो, छोटे अपराधों से ही बड़ा अपराध होता है। हमको पुलिस और आमजन के बीच में विश्वास, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण सेतु है, हमें उस सेतु को बनाए रखना है। अच्छी कानून व्यवस्था में पुलिस के साथ ही समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना समाज के कुछ नहीं हो सकता।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार अगस्त 2026 से शुरू हो रहे भर्ती चक्र में 8,11,000 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 5,08,885 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। वहीं उपनिरीक्षक पुनः परीक्षा 2021 में 2,18,000 से अधिक अभ्यर्थी 20 सितंबर को परीक्षा देंगे। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 30 अगस्त और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को होगी। आयोग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीकानेर पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेंज के महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि इन फोन को सिर्फ एक महीने में बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है।
3: 200 मोबाइल जो है करीब 50 लाख के हैं, जो रेंज टीम ने और जिला पुलिस ने रिकवर किए हैं। कहने को तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन किसी का अगर खोया मोबाइल वापस मिलता है तो उसको बहुत खुशी होती है। कई लोगों के लिए उनके लिए बहुत अमूल्य है। आम लोगों से यही अपील है कि आपका अगर कोई मोबाइल होता कम से कम उसके MPR या कुछ ना कुछ दर्ज जरूर कराए, वरना यही मोबाइल जो आगे जाके कोई क्राइम में किसी चीज में, जैसा आपको देखा होगा उसमें सीरियस क्राइम में भी यूज हो सकता है। तो आप कम से कम MPR दर्ज कराएं, थाने में की सूचना अवश्य दे ताकि हम इसको ट्रेस कर पाए।

0: बालोतरा के जानियाने में जल्द ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सीएसआर के फंड से राज्य सरकार को 22 करोड़ रुपए देगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में एचपीसीएल और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच संबंध में एमओयू हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज से क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के महत्व बेहतर अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि कॉलेज में रिफाइनरी की जरूरतों के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का ये पहला भजन हरिओम शरण की आवाज़ में।

नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज आप सुनेंगे मनोवैज्ञानिक सुश्री सुरभि कात्याल से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस सुरभि कात्याल, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे आज हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत ही सामयिक है और जो खासतौर से हमारे युवा साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। सुरभि जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: जी सुरभि जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आपकी जुबानी ही कि आप थोड़ा अपनी जो किस तरह से आपने मतलब ये साइकोलॉजी के क्षेत्र को चुना और क्या आपकी क्वालिफिकेशन इसको लेकर रही, इसके अलावा थोड़ा सा अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें।
2: जी, मुझे हमेशा से ही साइकोलॉजी में रुचि थी। मैंने 11th-12th में भी इसे रखा, फिर दिल्ली पढ़ने गई, बैचलर्स में ऑनर्स किया मैंने साइकोलॉजी के अंदर ही। उसके बाद शोध के अंदर 2 साल काम किया, फिर मास्टर्स कर लिया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, उसके अंतर्गत भी मैंने मानवीय अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य पे एक डिप्लोमा कर रखा है। और अब मैं नागौर के अंदर और ऑनलाइन भी अपनी सेवाएं एज अ साइकोथेरेपिस्ट दे रही हूँ।
1: जी, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी यदि कोई परामर्श करना चाहता है तो आप उपलब्ध हैं?
2: जी बिल्कुल। जी
1: तो सुरभि जी, हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की लेकर। तो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर कि लोगों को अभी भी, हालांकि अब हमारे जो समाज में काफ़ी जागरूकता आ गई है और शिक्षा का प्रसार भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं या किसी को कोई मानसिक समस्या है उस पर कोई वो अपने विचार शेयर करना चाहता है, कोई राय लेना चाहता है, तो उसको ये देखा माना जाता है कि उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। और अक्सर तो इसी वजह से, लोगों की इसी मानसिकता की वजह से, जो व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक समस्या से ग्रस्त है वो अपनी समस्या बताने में हिचक का अनुभव करता है, शर्म का अनुभव करता है, और उसके कारण से वो समस्या जाकर आगे जाकर कई बार वो आत्महत्या का रूप भी ले लेती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आए कि मानसिक स्वास्थ्य आज के समय की लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और हमारी जो रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी है उसको लेकर और जो तनाव है और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या है वो बहुत आम है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहूंगा कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे।
2: जी, असल में ना समाज दो रुखों की तरफ हो रहा है। कुछ लोग मानसिक स्वास्थ्य को हीन दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग उसे समझते हैं और उसे इतना डरते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। असल में मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होता है। और जैसे ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उपचार उपलब्ध है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपचार उपलब्ध है। इसे हमें छोटा मोटा नहीं मानना है, लेकिन हमें उसे इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं मानना है कि अगर हो जाए तो हम बस बुद्ध बन के बैठ जाए।
1: जी, तो इस सोच के परिवर्तन के साथ जो भी हम देखते हैं कि आज की जो हमारी दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से भी मानसिक तनाव के शिकार बहुत होते हैं लोग। तो अगर हम किस प्रकार की, तो हम अपनी दिनचर्या रखें, लाइफ स्टाइल रखें, किस तरह का आचार व्यवहार हमारा हो कि हम इस मानसिक, किसी भी मानसिक समस्या से हमें रूबरू ना होना पड़े। और अगर कोई मानसिक समस्या है तो उसके लिए हमें क्या पहल करनी चाहिए?
2: इस पर मैं 3 शब्द बोलूंगी, आनंद, आराम और आहार। हमें इन तीनों चीजों पर बहुत ध्यान रखना होता है। आजकल मशीन की तरह काम करने का रुख आ गया है, फोन हर समय चलते रहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे आजकल बहुत पॉपुलर

0: बहुत ही आम शब्द हो गया है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जीवन में काम के साथ में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें करें जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे संगीत सुनना हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे सैर पर जाना हो, चाहे लोगों से बात करना हो। वैसे ही आराम जरूरी है। जैसे शरीर थकता है वैसे ही मन भी थक सकता है। तो उस कारण से अगर मन थक रहा है तो थोड़े दिन मन को आराम दीजिए, थोड़ी तनाव वाली बातों से दूर रहिए। और हमारे आहार में आजकल लोग ये सोचते हैं कि मानसिक कमजोरी के कारण कुछ हो रहा है, बट हमारे जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जैसे आजकल विटामिन डी की तो कमी इतनी है और उसके कारण अवसाद बहुत बढ़ता है, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो हमारे आहार बहुत ज्यादा जरूरी है, धूप में रहना बहुत जरूरी है ताकि विटामिन डी बने।
1: जी, तो मतलब आहार और विहार दोनों का ध्यान रखें। विहार से मतलब ये है कि जैसे आप धूप धूप में खड़े हों और योग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, खेल कूद में रुचि लें और भी लोगों से मिले जुलें, मतलब वो सारी चीज़ें उसमें आ गई। हमने लाइफ स्टाइल को मतलब थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सुरभि जी, हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में कोई हादसा हो जाता है, वो किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, कोई भी इस तरह की उसके जीवन में घटना घट जाती है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति किसी के साथ कुछ होती है तो वो उसको किस तरह से उसको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है और उसको खुद को क्या प्रयास करने होंगे?
0: जी, जरूरी नहीं है कि हर जना जो हादसे से गुजरे वह अवसाद में ही परिवर्तित हो। तो एक तरह से हादसों से घबराना नहीं चाहिए, जिंदगी का नाम है, हादसे होते रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी, अगर हम इतने परेशान हो गए हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। मदद हमारे परिवार वाले हों, हमारे दोस्त हों, हमारे साथ में खड़े हैं। जुड़ाव बहुत जरूरी है अवसाद को मैनेज करने के लिए। द ऑपोजिट डिप्रेशन का जो उल्टा है वो कनेक्शन होता है, जुड़ाव,
1: जी
0: तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद हम सैर कर रहे हैं, हम अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, मनोरंजन भी ले रहे हैं, काम पे भी जा पा रहे हैं, बट फिर भी बात नहीं बैठ रही है, तो चिकित्सक या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने में कोई दोष नहीं है। आराम से जाइए। जैसे बुखार आता है, कुछ दिन घर पे अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाते ही है ना, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें।
1: जी सुरभि जी, इस यहाँ कई बार लोग जो है यह इस बात को लेकर भी भ्रमित होते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है और साइकाइट्रिक है उसमें क्या फ़र्क है। तो वो यहाँ हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि जो साइकाइट्रिक है वो तो मनोचिकित्सक यानी कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो चिकित्सक है वो साइकाइट्रिक होता है, और जो परामर्श देता है या थेरेपी देता है यानी कि जो आपको साइको प्रॉब्लम कोई हो उसको लेकर किस तरह का परामर्श जैसे आप देती हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट हम उसको कह सकते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, कई बार लोगों को साइकोलॉजिस्ट की मदद से वो अपनी समस्या उनका समाधान मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर उनको साइकेट्रिक की मदद भी लेनी पड़ सकती है यानी कि चिकित्सक को भी दिखाएं। तो यहाँ हम अभी साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो मानसिक थेरेपी जो जो सोशल आप उनको देते हैं सलाह एडवाइस, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर हमारे युवाओं की बात करें तो युवाओं को दो चीज़ों को लेकर बड़ा टेंशन होता है, एक तो होता है उनका पढ़ाई, परीक्षाएं, और अभी ये परीक्षाओं का समय भी है तो लगभग हर चाहे वो युवा वर्ग के किसी भी क्लास में अध्ययनरत हो। दूसरी चीज़ है वो उनका करियर को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या होगा। तो इस तरह से तनाव से ये गुजरना आम बात हो जाती है, और कई बार हमारे जो युवा वर्ग है हो या जो युवावस्था की ओर बढ़ते हुए जो किशोर हैं वो उस तनाव को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और वो कई बार आत्महत्या का रूप भी वो ले लेती है वो तनाव। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसको उनका तनाव प्रबंधन की होना चाहिए, वो उनको थोड़ा बहुत तनाव प्रबंधन की कुछ सीख हमें देनी चाहिए और कुछ बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना?
0: जी, आत्महत्या आजकल एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, खासकर कि आज के समाज में जितनी प्रतियोगिता आ गई है, जितना संघर्ष आ गया है, युवा आए दिन कहीं कोई ना कोई खबर आती रहती है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो माता पिता

0: और शिक्षकों को समझने की भी जरूरत है कि हम बच्चों पर किस तरह का दबाव डाल रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे जो इस उम्र से गुजर रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी अभी बाकी है, आगे बहुत पहलू आते हैं और हर एक चीज को पार करने के तरीके होते हैं। लेकिन अगर फिर भी तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं, तो मदद के तरीके होते हैं। जैसे अगर एकदम उस पॉइंट पर आप आ गए हैं जहाँ पे कुछ नहीं सहा जा रहा है, तो टाटा इंस्टीट्यूट की आई कॉल करके एक हेल्पलाइन है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रेन काउंसलर्स आपसे बात करते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी, ये याद रखिए, जो भी आत्महत्या करने से बच जाते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें असल में आत्महत्या नहीं करनी थी, हमें बस अपनी परिस्थिति से बचना था। तो ये पल निकल जाता है, हमेशा यही याद रखिए। और मैं यही चाहूंगी कि एक जना भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है।
1: जी, तो बिल्कुल परिस्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। वो जो समय होता है जब वो हम कहें कि वो जो कमजोर पल होते हैं, जब हम हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो वही आत्महत्या के कगार तक हमें पहुंचाते हैं। अगर उन क्षणों से हम बाहर निकल जाएं, उनको हम जीत लें, उस समय हमारा जो मन है अगर वो सशक्त हो और उस समय को हम गुजार लें सकुशल, तो हम आगे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो बहुत से लोग जो कि एक समय था जब वो आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे, बाद में उन्होंने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की और बहुत नाम किया। तो जीवन तो बहुत अनमोल है, इसको कभी इस तरह का विचार आए वो उस स्थिति में मैं ये चाहूँगा कि सुरभि जी आप बताएं कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, मित्र है, और आजकल हम देखते हैं कि जो मोबाइल का और उसमें भी सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में आ गया है, जो गैजेट्स हैं हम उन पर हमने उनको अपना साथी बना लिया है, और हम जो पारिवारिक हमारे रिश्ते हैं, सामाजिक जो रिश्ते हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, सामाजिक हमारा उठना बैठना कम हो गया है, इंटरेक्शन कम हो गया है, तो वो कितना इसमें हमें इसमें मदद कर सकता है हमारा जो सोशल बिहेवियर है और जो हमारे सोशल हम कहें कि आचरण है, तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी प्रकाश डालें।
0: जी, अगर आपके आसपास में कोई भी इस तरह की चीज़ से गुजर रहा है तो सबसे पहले बात करें। बात करना, राज खोलना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो आपसे बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सारे सामाजिक रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के तरफ क्रिटिकल, यानी कि थोड़ी थोड़ी उसकी कमियां निकाल देती हूँ। लेकिन एक अच्छा टूल है जिससे हम बहुत लोगों से, बहुत तरीकों से जुड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। तो सोशल मीडिया के कारण क्या होता जा रहा है कि हम सोशल मीडिया ना एक तरह का क्यूरेशन हो गया है, जिसपे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं ना, वो तो सामने आ जाती हैं हमारे। जो उनकी नाकामियां हैं, जहां वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, वो हमारे सामने नहीं आती। तो हमें लगता है कि केवल हमारी जिंदगी खराब चल रही है, और इस कारण से हमारे मन में हीन भावना आ जाती है और हमें लगता है कि हम सबसे गए गुजरे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं सोशल मीडिया के अलग तरीके से उसे इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को फोन करें, फोन पर बात करें, ना कि केवल रीलें देखें। इंस्टाग्राम पे जाते से आजकल चलन चल पड़ा है। अगर आपके लोग दूर रहते हैं तो वीडियो कॉलिंग का एक तरीका आ गया है, जिससे हम दूर रहे हुए लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप अपने अपनों के साथ में रह रहे हैं तो उनसे आमने सामने बैठ के बातें करें, हंसे, गाने गुनगुनाएं, खेलें, क्योंकि उससे बड़ा टोटका कुछ नहीं है अपने आप को स्वस्थ रखने का।
1: जी, और जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप दिल खोलकर बात कर सकें, जिसको आप अपने दिल के राज कह सकें, कि कहते हैं ना कि कई बार किसी को कहने से मन हल्का हो जाता है, तो बहुत हमारा मन का बोझ हल्का हो जाएगा अगर हमारे जीवन में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे आपके छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा जीवन में जरूर आप से संबंध आपके होने चाहिए जहाँ कि आप अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं। और सुरभि जी, अब चलते चलते हम चाहेंगे आपसे और हमारे सुनने वालों से आप क्या कहना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तनाव को लेकर, और

0: अन्य चीजों को लेकर कि हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या होना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे आप?
1: जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो उसमें से एक सदस्य को कभी ना कभी किसी न किसी मानसिक परेशानी से ग्रस्त होना पड़ेगा। तो इस कारण से सबसे बड़ी बात है कि हम उन्हें समाज का हिस्सा बनाएं, उन्हें अलग ना समझें। और अगर आप खुद परेशानियों से गुजर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को अलग ना समझें, जानबूझकर लोगों से खुद को अलग ना करें, लोगों में मिले जुलें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास में उपचार हर चीज का है, पर उससे पहले हम हमेशा प्रिवेंशन यानी कि बचाव का प्रयास करते हैं। और बचाव का सबसे अच्छा तरीका मानसिक रोगों के लिए यही है कि हम सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े रहें, अपने आराम, आनंद और आहार का ध्यान रखें।
0: सो बी पॉजिटिव, बी कनेक्टेड,
1: जी
0: ये बहुत जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इस बातचीत से बहुत फायदा होगा। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज मनोवैज्ञानिक सुश्री सुरभि कात्याल से अशोक कुमार की बातचीत आप सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

0: हाथों में हाथ डाल, ए गुल चेहरा परी जमाल।
1: श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दिल तो पागल है, आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 015-82 और

हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

ये हैं कुमार शानू और अलका याग्निक फिल्म दिलवाले में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए।

0: बरेली की बर्फी अभी आपने सुना ये गीत हर्षदीप कौर और यासर देसाई की आवाज में।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

जुड़वा 2 अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत देव नेगी और नेहा कक्कड़ की आवाज में, दबंग। आइए सुनते हैं दबंग 2 फिल्म का ये गीत जिसमें आवाज है ममता शर्मा और वाजिद की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने नए, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज से कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सुदर्शन फाकिर का कलाम।

0: चंदनदास की आवाज में निदा फाजली का कलाम आपने सुना। विविध भारती से रंग तरंग सुन रहे हैं आप। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: सुदर्शन फकीर का कलाम था चित्रा सिंह की आवाज।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये कार्यक्रम है रंग तरंग। कलाम गुलजार का, मौसिकार भूपिंदर सिंह, आवाज मिताली सिंह की, एल्बम है चांद परोसा है।

0: हरी हो जा,
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज

0: करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित

0: प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा CBI जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में याद शम्मी कपूर की। आज है उनकी याद का दिन।

महफिल शमी कपूर की यादों की, और ये तमाम गाने जिनमें है मस्ती बेफिक्री, रेबेल शमी कपूर, मस्ती की बौछार। हंसते जयपुरी, शंकर जयकिशन।

विविध भारती पर यादों की महफिल, शम्मी कपूर के गाने, जानवर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गाना फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

पर अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश वो फिल्म जिसे खुद शमी कपूर ने डायरेक्ट किया था, मनोरंजन। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से कल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले से प्राचीर

0: से देश को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197, जम्मू कश्मीर के 51, पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में आयोजित तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सादुल शहर उप जिला अस्पताल के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद वे अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री का आज धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट, हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़े कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि हथकरघा अनुभव केंद्र की भारत के हथकरघा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए परिकल्पना की गई है, जहां पारंपरिक ज्ञान को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि सक्रिय रूप से अभ्यास और अनुभव से आगे बढ़ाया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि उद्घाटन प्रदर्शनी में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 24 पुरस्कार विजेता बुनकरों के उत्पादों और 30 से अधिक चयनित ब्रांड्स भाग लेंगे। प्रदेश के 22 सरकारी विद्यालयों में भामाशाहों के सहयोग से कराए जाने वाले 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में ज्ञान संपर्क पोर्टल पर भामाशाहों की ओर से विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए पेश किए गए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। राज्य परियोजना निदेशक और समन्वयक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि इन विकास कार्यों से स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार होगा। इनमें भवन निर्माण मरम्मत के साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधी काम शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3,993 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, जो 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के माध्यम से 252 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन तथा स्टोर सहित तकनीकी विभागों के पद शामिल हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू में अच्छी बरसात दर्ज की गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जयपुर और 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दर्ज की गई। विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर तथा बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

क्या शानदार गाना है ये, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज, खयाम की तर्ज, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस बारे में आए हैं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि ये गाना तो आज जरूरी तौर पर बजेगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये गीत प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सावन के मौसम में अकेलेपन और दिल की तड़प को दिखाता है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आज मैं कुछ पंक्तियां लिखकर भेज रही हूं जिसे आप कार्यक्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां हैं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी एक दास्तान हूं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सूरत गुजरात में रिमझिम बारिश बरस रही है, कल शाम से फिर छाए हैं बादल और मौसम सुहावना हो गया है। एक श्रोता ये बता रही है कि वो एलेक्सा पर विविध भारती सुनती हैं। हमने एक प्रोमो में भी आप सभी को ये बताया है कि एलेक्सा के जरिए कैसे विविध भारती सुनी जा सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि नगमा तलाशी की जद्दोजहमत से आजाद हैं आज, ईजादे इबारत ना खुदा ने खुद ही इसे आसान बना दिया भाई, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक श्रोता ये लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में शम्मी कपूर के शानदार गाने सुनवाए गए और ये गाने हम सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। ये हमारे एक नहीं कई श्रोताओं की बातें हैं। एक और श्रोता का कहना है कि ये बातचीत शायद दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो धुनों के बीच हुई है। सवाल बारिश का था, जवाब किसी पुराने गाने ने दिया, बादलों में तस्वीर ढूंढते ढूंढते बात दिल तक उतर आई, कुछ बोल याद आए, कुछ लम्हे और जाते जाते उसने कहा जब तुम पुकारो, बस फिर क्या था, मुलाकात कहीं खत्म नहीं हुई, एक गीत की तरह बजती रही। इस गाने को जिस गायक ने गाया है वो एक साज बजाने के लिए मशहूर थे, तो बताइए कि ये गायक कौन है और वो कौन सा साज बजाया करते थे।

अच्छा एक बात बताइए कि आप भी आसमान में बादलों की आकृतियां देखकर किसी की तस्वीर ढूंढा करते हैं बादलों में?

भूपिंदर की आवाज में ये गाना आपने सुना, और ये जो गाना है ये सत्या फिल्म का है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उन्होंने ये गाना पहली बार सुना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जानकार हमारे एक श्रोता हैं, जिन्होंने कहा है कि भूपिंदर सिंह इलेक्ट्रिक स्पेनिश गिटार ज्यादातर बजाते रहे हैं। इससे पहले वो इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार भी बजाया करते थे, पर भानु गुप्ता जी ने उन्हें स्पेनिश गिटार की तरफ मोड़ा है। विशाल भारद्वाज का संगीत था ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में जब सफेद बादल को देखता था तो सोचता था कि ये रजाई में जो रुई भरी जाती है शायद यहीं से आती है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जब मैं शाम को छत पर वॉक करती हूँ आसमां खुला अच्छा लगता है, मैं उनमें बादलों में तस्वीर की कल्पना करती हूँ, कभी सागर जैसे कभी पहाड़ों जैसे, मुझे बादलों में कभी कभी तो गणपति भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भूपेंद्र जी अलग अलग तरह की आवाज, उनकी आवाज के टोनेशन अलग अलग हैं और दिल को सुकून पहुंचाती हैं। गिटारिस्ट के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बादल बहुत डराते हैं, उसमें डरावने

बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है, 1970 में ये फिल्म आई थी। नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, प्रेम की वो खूबसूरत इबारत है जिसमें प्रकृति भी बोलती है और मन भी बोलता है। फूलों के रंग जैसे भावनाओं के रंग बन जाते हैं। इस गीत को सुनना जैसे किसी पुराने खूबसूरत खत को पढ़ने जैसा है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ चिट्ठियों को सजाकर तरह तरह की रंग वाली स्याही से लिखते थे, पर हम तो अपनी स्कूल कॉलेज के दिनों में जो नोट्स तैयार करते थे, जो फाइनल कॉपी तैयार करते थे, उसमें सुडौल अक्षरों से लाल या ग्रीन पेन से उसकी हेडिंग लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि शादी से पहले अपने मायके में गर्मियों की छत पर सोते थे, तब सात तारों का एक समूह देखकर अपने परिवार के सभी लोग उस समूह को जोड़ कर देखते थे, क्योंकि हम परिवार में सात लोग थे। ये जो यादें हैं ये बहुत याद आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती पर मेरी चिट्ठी तो नहीं शामिल हुई, लेकिन फेसबुक के जरिए डिजिटल चिट्ठियां शामिल हो जाती हैं। एक और श्रोता वही याद लिख रहे हैं कि कैसे बचपन में छत पर सोते थे और सप्तऋषि ढूंढा करते थे, तब तारे बहुत स्पष्ट नजर आते थे और बहुत सारे, लेकिन आज तो कृत्रिम रोशनी ने जैसे तारों को लील लिया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने विविध भारती के मनचाही गीत कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक शामिल नहीं हुई है, हमें इंतजार है। इतनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं और हर रोज इन चिट्ठियों को छांटा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी चिट्ठी शामिल हो जाएगी। एक एक चिट्ठी हमारी टीम मिलकर छांट रही है, ये बहुत गजब का काम है और सब लोग कर रहे हैं मिलकर। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत पर नहीं बल्कि चारपाई पर खुले आसमान के नीचे सोते थे और तारों को गिनते हुए पता नहीं कब नींद आ जाया करती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, बारिश की फुहारें भी पसंद है, पर इतनी ज्यादा बारिश पसंद नहीं है कि सैलाब आ जाए और जान माल की आंधी हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब तारे टूटते थे तो कुछ विष मांगा करते थे, पांच फल का नाम जल्दी से लेते थे, तरह तरह की विश्वास थे टूटे हुए तारों को देखने को लेकर। इसके अलावा कुछ और इतने सारे श्रोता हैं जिन्हें सप्तऋषि तारामंडल देखने का शौक था और बचपन की उनकी याद जैसे आज के इस कार्यक्रम के जरिए ताजा हो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मां से पूछते थे कि कितने तारे हैं, तो मां हमेशा जवाब देती थी आसमान में कुल 3000 तारे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बादलों में नीला आसमान सफेद बादलों की चित्रकारी करता है और आकृति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। इसके अलावा बादलों के बारे में कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो ये इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हर दिन यूं होता है कि कभी ना कभी पुराने किसी वक्त की याद आती है या गुजरे दौर के किसी व्यक्ति की याद आती है। आज सुबह से आपको किसकी याद आ रही है?

एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में विविध भारती पर मिली फिल्म का विज्ञापन आया करता था और उसमें कहा जाता था अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत शानदार है, आज की इबारत बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, कल 15 अगस्त को उनका जन्मदिन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, बता दे तेरी यादें किस कोने में सुखाऊं, बारिश बाहर भी है और अंदर भी। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोली, टेक्स्ट देखा तो उसमें यूनुस जी का नाम था, बस काम करते करते फटाफट जोरदार कमेंट पढ़ने वाले यूनुस जी की याद आ रही थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुबह से मुझे अपने भारत देश की याद आ रही है, अपने देश में नहीं हूं और स्वतंत्रता दिवस के माहौल को याद कर रहा हूं। एक और श्रोता लिखती हैं कि राखी का त्यौहार आ रहा है और मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हमें तो बस आपके कार्यक्रम की याद आती है, लिखते हैं और पोस्ट आए और कुछ लिखें। एक और श्रोता अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 45 साल पहले कितना बढ़िया समय था, हाथ का पंखा होता था, कोई रिश्तेदार आता था तो छत पर ही लेटा करता था और तारे गिनते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि बचपन में हम पोस्ट कार्ड को कबूतर का आकार देकर अपने चाचा को भेजा करते थे। एक और श्रोता है जो आसमान में तारे देखना पसंद करती रही हैं और उनका कहना है कि मुझे लगता है कि एक दूरबीन लूं और सितारों की रहस्यमयी दुनिया की तरफ चली जाऊं। एक श्रोता है जो आसमान में ध्रुव तारे को हमेशा देखती और ताकती रही हैं। तो ये सब बातें हमारे श्रोताओं की हैं। एक और श्रोता का कहना है कि आज सवेरे अचानक पापा की याद दिल पर छा गई, उनको गए 7 साल हुए

पापा को कॉल करके बात करूं ऐसा एक पल के लिए हुआ, पर फिर संभल गई। मन भारी हो गया, जैसे काले बादल छा गए। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गानों के बीच की लाइन देखकर पढ़कर गाना जरूर याद आता है, पर कई बार उसकी पहली लाइन में गड़बड़ हो जाती है, दूसरे किसी गाने से मिक्स हो जाता है। जब आप कार्यक्रम में गाना सुनाते हैं तो पता चलता है, अच्छा अच्छा ये गाना था। और ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स। और अब एक बहुत ही मजेदार अद्भुत गाना, ललित गाना आ रहा है। इस गाने के गीतकार का नाम आपको बताना है। जगजीत सिंह के फिल्मी गानों में आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा है, और जगजीत सिंह की गजलों में आपके दिल के करीब कोई एक गजल कौन सी है।

भाई जगजीत सिंह के बारे में पूछा एक श्रोता है, उन्होंने पंकज उदास के बारे में बताया ये क्या हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि होश वालों को खबर क्या, ये बहुत पसंद है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, ये बहुत पसंद है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि जगजीत सिंह की गजलों की किताब मैंने 2012 में कानपुर रेलवे स्टेशन से खरीदी थी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गजल बहुत पसंद है और मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को बताती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कौन कहता है मोहब्बत की जबां होती है और झुकी झुकी सी नजर उन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें होंठों से छू दो को तुम पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें पसंद है कोई पास आया सवेरे सवेरे और कोई ये बता दे कि वो तन्हा क्यों है। एक और श्रोता है जिन्होंने मेरी आंखों ने चुना है तुझे देखकर ये वाली रचना पसंद है। इसके अलावा कई और श्रोता हैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया, कोई फरियाद, ये सब पसंद है। ये दौलत भी ले लो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये सब अलग अलग श्रोताओं को पसंद हैं। उसके अलावा एक पंजाबी गीत है सावन का महीना, ये कुछ श्रोताओं को पसंद है। तो देखिए कितनी सारी गजलें, कितने सारे नगमे जगजीत सिंह के लोगों ने एकदम से बताए हैं। और आप सभी जिस तरह से जगजीत के दीवाने हैं, ये कमाल की बात है। चलिए पुराने दौर में ही रहते हैं और अब मुझे ये बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये दोनों फिल्में आप में से सबसे ज्यादा बार किसने देखी हैं, आज तो पता चल जाएगा। आप दोनों बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये फिल्में आपने कितनी कितनी बार देखी हैं। जरा देखते हैं कि हमारे श्रोताओं में कौन है चैंपियन जिसने सबसे ज्यादा बार ये फिल्में देखी हैं।

रोता नहीं, और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है, और इसके अलावा 30 दिन तक लगातार एक श्रोता ने देखी है, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि इंदौर की एलोरा टॉकीज में कयामत से कयामत तक देखी थी, 9 बार मैंने प्यार किया देखी है, एक श्रोता है उन्होंने, और मैंने प्यार किया एक और श्रोता है उन्होंने 11 बार देखी है, और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है, 20 बार एक श्रोता ने देखी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तादाद यही है क्या, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। 20 बार देखी ये सबसे ज्यादा है भाई, मेरी तादाद कम रह गई, मैंने तकरीबन 7 बार देखी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने में महिला स्वर किसका है, महिला स्वर किसका है ये बताइएगा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये सुलक्षणा पंडित की आवाज है और हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि मेरी लिस्ट का चौथा गाना शामिल हो गया आज के इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि इन सब बातों को छोड़िए, जब मैं पांचवीं में थी तो लव स्टोरी 25 बार देखी थी और अपनापन तो जिस दिन लगी थी उसी दिन 3 सप्ताह 25 पैसे की टिकट में देखी थी। भाई वाह वाह वाह। तो एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे टॉप पर हूं, मैंने प्यार किया एक बार देखी, कयामत से कयामत तक आज तक नहीं देखी। हाँ भाई आप टॉप पर हैं। उसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। मेहसाणा जिले के वीजापुर में भाग्योदय थिएटर में ये फिल्म देखी थी जब वो 6वीं क्लास में थे। तो भाई एक श्रोता है जिन्होंने 100 बार फिल्म देखी है, अब क्या कहा जाए, सेंचुरी मार ली है इन्होंने, ये तो गजब की बात है। इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं की बातें हैं। अब जो गाना आ रहा है वो वक्त की बात करता है। हमें ये बताइए कि किन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ये वक्त बीत क्यों नहीं जाता। किन लोगों के साथ वक्त की रफ्तार तेज लगती है और किन लोगों के साथ धीमी है?

0: एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते वक्त ही नहीं कटता। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्रोग्राम जब आप करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं पुणे से अपने गांव भुसावल जाता हूं, माता पिता के साथ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाना चाहिए लेकिन बिजली की फुर्ती के साथ बीत जाता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन है बातूनी दादी अम्मा, उसके साथ समय का पता नहीं चलता। और यूनुस जी, आप शताब्दी एक्सप्रेस हैं, आपके साथ समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पतिदेव के साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम सुनते हुए मुझे लगता है कि वक्त थम जाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं,
1: अच्छा तो हम चलते हैं।
0: आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, 1:50 पर ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं।
1: आधी रात को
2: कहाँ,
0: हम कहीं नहीं जा रहे। अभी बहुत सारे गाने सुनाएंगे, एटलीस्ट 2-3 गाने तो आपको सुनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। पर इस गाने का इस्तेमाल आम बातचीत में आप कब करते हैं और पिछली बार कब किया था ये जरूर बताइएगा।
3: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए।
0: और इस मौसम में कहां पिकनिक मनाने जाने का मन कर रहा है आपका, कुछ इस तरह।

बहुत सारे श्रोता हैं जिनका मन पता नहीं कहां कहां जाने का कर रहा है। किसी श्रोता को जाना है कोंकण, किसी को मुंबई आना है, कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें इछावर के पास कालिया देव की एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पिकनिक मनाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां श्रोता सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं अरे इतनी जल्दी 2 बज गए क्या? अरे नहीं, अभी नहीं बजे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ गाने सुना रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि उन्हें सब लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है और यहां स्टूडियो में मैं आपको सुना रहा हूं ये गाना। मुकेश की आवाज है। बताइएगा ये गाना किसने लिखा है।

बज ही रहा था कि हमारी एक श्रोता कहती है आज बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन अभी जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो वो रुक गई है। मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को ना यूं बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। और ये किस फिल्म का गाना है जिसके जरिए मैं आपसे साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा, बताइए।

भाई हम कहीं नहीं जा रहे, 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। और अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी जाता कहाँ है दीवाने वाला गाना हम पर लागू नहीं हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आज की ये इबारत दो लोगों की रूमानी बातचीत वाली इबारत थी। हमें उम्मीद है कि इबारत और उसमें बने हुए गाने आपको पसंद आए हैं। अब नमस्ते।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक

0: क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था, परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई, परंतु धर्म नामक बांग्ला और कर्मयोगी नामक अंग्रेजी, ऐसे दो नए साप्ताहिक पत्र शुरू करके श्री अरविंद ने अपना प्रखर लेखन जारी रखा। 4 अप्रैल 1910 को गुप्त रूप से चंदन नगर, जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां श्री अरविंद जाकर रहने लगे और आगे चलकर कुछ ही समय में पौंडिचेरी में स्थायी रूप से बस गए। वंदे मातरम का एक प्रचार केंद्र ठंडा पड़ गया। लोकमान्य तिलक का मंडाले कारावास और श्री अरविंद का पौंडिचेरी चले जाना, इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
1: लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए, ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थी। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है।
0: कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम।
1: जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और उस पर तुरंत ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रखर क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए ही फांसी स्वीकार की।

काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को

फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। यह तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया।

0: 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए, उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए। तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था।
1: आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे। बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था,
2: बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं है, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे, केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे। तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है।
1: बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा।
0: प्रारंभिक काल में

वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है।

0: पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: ये थी वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प

0: आशा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी।

0: आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहाँ नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
3: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और

0: और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
1: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बडबिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मजाज लखनवी की रचना।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं। अब उजाला फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: शैलेंद्र की बोलती है शंकर जयकिशन की तर्ज मन्नाडे और साथियों की आवाज दी। फिल्म का नाम था उजाला।
1: रौक, रौक।
0: और अब दिल देखिए देखो फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत उषा खन्ना का।

0: husband and wife.
1: शबीर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम बॉयफ्रेंड। शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की तरह से।

ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अब मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया ये गीत, फिल्म का नाम सिंगापुर।

शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर

0: और इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। आपको बता दें कि ये जो भी गाने आज इस कार्यक्रम में आपने सुने, ये शम्मी कपूर की फिल्मों के गाने थे। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। उम्र को अगर केवल वर्षों में गिना जाए तो शायद जिंदगी छोटी बड़ी लगने लगे, लेकिन अगर उसे मुस्कुराहटों, अनुभवों, रिश्तों और खूबसूरत पलों में गिना जाए तो हर उम्र अपने आप में एक खूबसूरत मौसम है। मन में उत्साह हो, आंखों में चमक हो और दिल में कुछ नया करने की चाह हो तो जिंदगी हर सुबह एक नए रंग में हमारे सामने आ खड़ी होती है। जिंदगी का असली सौंदर्य इस बात में नहीं कि हमने कितने साल जिए, बल्कि

0: इस बात में है कि हमने उन सालों में कितनी जिंदगी जी है। चलिए देखते हैं आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे बातें करने वाली है। अरे वाह, तो खत्म हुआ इंतजार, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहाँ से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली, बताइए आप अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शांति बहन है, अभी डिंगरोल से बात कर रही हूँ, राजसमंद जिले से, राजस्थान से।
0: ओह अच्छा, राजस्थान से बात कर रही हैं आप। तो चलिए बताइए क्या करती हैं आप, क्या जॉब करती हैं या फिर आप घर में रहती हैं?
1: नहीं, हाउसवाइफ।
0: तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बेटे, एक बेटी, बहू, एक पोती, एक पोता, एक नाती।
0: ओहो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा परिवार। आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके बचपन की आपको यादें होंगी कुछ की, जैसे भी 15 अगस्त आ रहा है, तो आप किस तरह से आप उनके लिए तैयारी करती थी, आपको करना पड़ता था कुछ?
1: नहीं मैडम, वो सब स्कूल में से सब तैयारी करवाते थे, सब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को खाली उनके कपड़े का, शूज का, ये सब अच्छे से तैयार करके भेजना था।
0: हाँ, यानी सुबह सुबह जल्दी
1: उठना, हाँ टाइम पे उठा के भेजना पड़ता था बस। वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे तो उनको टाइम पे तैयार करके और उसके पापा के साथ भेजना पड़ता था उस दिन।
0: तो अभी भी तो आपके जो नाती पोते हैं आपने बताया, तो उनके लिए भी आपके बच्चे तैयारी करते होंगे अब, है ना?
1: करते हैं ना मैडम।
0: तो ये जो यादें होती है ना, जैसे जो अपने राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ना, उनकी यादें सच में बहुत ही अच्छी होती हैं, हमें हर एक को होती हैं, है ना? तो पहले तो जैसे क्या क्या चीजें मिलती थी, है ना, तो हम इंतजार करते थे कि जो 15 अगस्त आ रहा है ना, या 26 जनवरी आ रही है,
1: ये सब तैयार करके रखने पड़ते थे जब हम पढ़ने जाते थे, तो अभी
0: पहले से
1: नहीं होते थे तो लेके आते थे, नहीं मम्मी हमको चाहिए ये,
0: एकदम चमकती हुई ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म
1: प्रेस करवा के लाते थे।
0: बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें रहती हैं,
1: अच्छी यादें। और एक उमंग सा होता था,
0: बिल्कुल,
1: हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे।
0: हाँ, क्योंकि सब बच्चे उसी तरह से आएंगे। और जो ये राष्ट्र के जो त्योहार होते हैं ना, ये समझिए सही मायनों में त्योहार होते हैं पूरे देश के ना, सब लोग इसमें भाग लेते हैं। तो बताइए
1: आज के दिन आप मेरा ये गाना दे दोगे तो भी अच्छा है।
0: हाँ, आप इस लाइन को आप गुनगुना के बता दीजिए फिर हमें।
1: दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए।
0: वाह क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम सुनवाते हैं,
1: गाना दे दीजिएगा मेरा,
0: सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी,
0: तो आप कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते। मैं बरगढ़ जिला ओडिशा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। सनप्रभा, आप बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ जी, अभी शादी नहीं हुई है, घर में हूँ। तो
0: अच्छा,
1: घर का कामकाज करती हूँ, आकाशवाणी सब भी आकाशवाणी का केंद्र सुनती हूँ,
0: हाँ।
1: केंद्र का प्रोग्राम सुनती हूँ, और फोन इन में जुड़ जाती हूँ, श्रोताओं के साथ भी जुड़ जाती हूँ।
0: अच्छा,
1: तो काम काज के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जी
0: बिल्कुल।
1: आकाशवाणी का।
0: मनोरंजन जब होता है ना तो काम और आसान हो जाता है ना, और
1: जी
0: थोड़ा
1: जी जी
0: जल्दी होता है, या हमें पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता
1: काम कम खत्म हो जाता है, पता ही
0: है।
1: नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है
0: तो ये
1: जब काम
0: बताइए
1: होता है
0: सन प्रभा जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: जी। मुझे कामकाज के साथ साथ गाने सुनना, गाने पुराने गाने मत बहुत अच्छा लगता है कि पुरानी फिल्मी का गाने सुनना अच्छा लगता है। तो फिर अभी मेरी साहित्य में भी जरा रुचि है,
0: अरे वाह।
1: मैं कविता वगैरह लिखती हूँ हमारे ओडिया में, संबलपुरी में।
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छा लगता है ये सब
0: तो ये तो
1: करना
0: बहुत अच्छी बात है, आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप कविता लिखती हैं,
1: जी।
0: कितनी अच्छी बात है ना। अपने विचारों को व्यक्त करने का आपके पास एक तरीका है ना, कविता के
1: जी जी
0: माध्यम से या कहानी के माध्यम से, है ना। बहुत अच्छी
1: जी
0: चीज है ये। और साथ ही ये बताइए कि तो आपको कौन से जो लेखक हैं या कौन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: जी हमारी तो उड़ीसा का तो लेखकों का लिखना अच्छा लगता है। हमारे जो हम उड़ीसा में हमारी प्रतिभा है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, और उनकी उपन्यास में बहुत अच्छा लगता है, जैसे जाज्ञसेनी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से हैं
0: नहीं, बिल्कुल,
1: जिनका
0: बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात है।
1: अच्छा
0: देखिए, आप जानती हैं, आप पढ़ती हैं, तो आपको मालूम है उनके बारे में, उनकी लेखनी के
1: जी
0: बारे में आपको पता है। तो आपके जरिए हमें भी पता चला कि कितने अच्छे लेखक हैं वहाँ पे। तो जो पढ़ना
1: जी
0: चाहेगा वो आराम से इनका लेखन निकाल के पढ़ सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये।
1: और
0: तो
1: एक बात बता देती हूँ जी कि हमारे हिंदी में नोवेल बहुत मैं पढ़ती थी पहले,
0: अच्छा,
1: गुलशन नंदा की पढ़ती थी
0: अरे
1: नोवेल।
0: वाह, उनकी तो किताबों के ऊपर कितनी ही फिल्में बनी है ना।
1: बहुत बहुत बहुत
0: हाँ
1: जो कटी पतंग है ना, कटी
0: हाँ
1: पतंग वगैरह ये सब नॉवेल भी पढ़ चुकी हूँ और फिल्म भी देख चुकी हूँ जी,
0: जब
1: बहुत अच्छा
0: आपने
1: लगता
0: नॉवेल पढ़ा उसके बाद फिल्म देखी तो और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम जिस
1: जी
0: चीज को
1: जी
0: पढ़ते,
1: सब जानकारी,
0: बिल्कुल।
1: सब जानकारी हो जाती थी
0: बहुत अच्छे
1: सब
0: लेखक हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो ये सब चीजें होती हैं, इस पे जो अगर कोई फिल्म बनती है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो
1: बहुत।
0: बताइए, अब आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्यासा सावन का गाना। तो गाने के बोल जरा गुनगुना दूँ क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुना दीजिए।
1: गाने के बोल है जी, मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे मत पर...

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं अभी कौन सी सखी है हमारे साथ। हेलो सहेली।
1: नमस्कार राधे राधे मैम। हेलो सहेली।
0: नमस्कार, तो बताइए पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं त्रिपुरा से संगीता देवरात बोल रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा, गांव
0: अच्छा,
1: का नाम है चंदीपुर।
0: अरे वाह, तो आप त्रिपुरा से बोल रही हैं संगीता जी। हाँ, तो आप बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ, हम लोग घर में 3 लोग हैं।
0: अच्छा, तो आपको बच्चा छोटा है कि बड़े हैं।
1: मैं घर में सबसे छोटा बहू हूँ
0: हाँ
1: और मेरा एक ही लड़का है,
0: हाँ तो बेटा छोटा है आपका।
1: वो बीएससी फॉर्म में पढ़ती है कॉलेज
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा बीएससी में। नहीं, बड़ा बेटा है। तो आपको कुछ याद है अपने बेटे के बचपन का? जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त को मनाया जाता था, जिस तरह से जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो कुछ यादें हैं
1: तो
0: आपकी?
1: वो तो स्कूल में जाया करती थी, साथ में मैं भी जाती थी उसको लेके। तो उसको कभी कभी गाना भी गाना पड़ता थी, मदद
0: अच्छा,
1: करती थी मैम।
0: हाँ, अरे वाह।
1: तो मैम मुझे गाना सुनना दीजिए। फिल्म का नाम है शारदा,
0: शारदा,
1: लता दीदी ने गाया था इस गाने को।
0: हाँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं गुजरात से बोल रही हूँ, नीलोफर।
0: अच्छा, नीलोफर बोल रही हैं आप गुजरात से। तो बताइए नीलोफर
1: हाँ,
0: जी, आप क्या करती हैं?
1: मेरे पापा की राशन की दुकान है, और वेफर और आइसक्रीम ये सब भी हम लोग बेचते हैं
0: अरे
1: दुकान
0: वाह,
1: में।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे ना ले लिया सुनना बहुत अच्छा लगता है, और टीवी देखना।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आज हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मुझे ना दामिनी पिक्चर का गाना सुनना है।
0: कौन सा वाला?
1: बिन साजन झूला झूलू मैं, वादा कैसे भूलू,
0: वाह
1: करता है ये मेरा मैं उनके गगन को छूलू।
0: गगन
1: बिन
0: को छू
1: साजन
0: लीजिए
1: झूला
0: आप,
1: आया
0: आपके पसंद का ये
1: सावन,
0: गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे, मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, आप वैसे ही से बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करते हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में हम 3 जन हैं, मेरे हस्बैंड पेशावर में,
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है,
0: बड़ा।
1: कॉलेज जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस
1: हाँ
0: बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: या
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां वाइट कलर के पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आपकी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था बोलने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना, तो
0: अच्छा,
1: हम किसी से कम नहीं मिले।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
2: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से।
1: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
2: हाँ, घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
1: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
2: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
1: अच्छा अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
2: आप 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहते था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते थे
1: मुझे यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है तो हमें जाना जरूरी है।
2: वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था, उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे और 2 मिलते थे।
1: हाँ, वो लड्डू तो बहुत ज्यादा कीमती होते थे ना।
2: जी, बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था बाकी नहीं मिलता था टेस्ट
1: में। बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना, वो एकदम मन में बस जाता था, है ना। और साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना, तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता था उस समय की जो 15 अगस्त थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है,
1: जाना है हमें।
2: यूनिफॉर्म गंदी रहती थी तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाए।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता था, एकदम देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय में पहुंच गई।
1: देखिए, आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना। बात करते करते
2: मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती है।
1: अरे

0: वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, उन्हें बहुत पसंद है रेडियो। जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी। और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
0: जी
1: होती है अगर हेलो शैली में मेरी
0: हाँ,
1: बात होती है तो।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: कुमार शानू की आवाज है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
0: हाय,
1: की।
0: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
1: जी,
0: बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको
1: मेरी
0: पसंद।
1: मम्मी
0: आप
1: का नाम ले लूं?
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: मेरी मम्मी का नाम है सोरम बाई और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
0: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कितने हस

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है।
1: हाँ बहुत
0: तो
1: पसंद है।
0: किचन में आपको खाना बनाना पसंद है, तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है इसलिए।
0: अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की
1: जी
0: तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी इसलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना। हाँ
0: अरे वाह, बहुत
1: 15 अगस्त
0: बढ़िया,
1: को
0: और आपका
1: इसलिए
0: नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ इसीलिए भारती रखा गया है।
0: बहुत बहुत बहुत
1: हाँ
0: बधाई हो आपको,
1: बहुत खुशी
0: जन्मदिन
1: हुई
0: की
1: आज
0: अग्रिम
1: आपने फोन
0: बधाइयां।
1: लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए,
1: हाँ
0: आज हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला गाना, कभी पिक्चर का गाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद
0: सावन का
1: है।
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: है। हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल,
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ
0: हाँ,
1: में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताना चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका, एक तो रोहित है और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, पहले
1: हेलो सहेली।
0: बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी
1: हाँ
0: बोल रही हैं, तो ये बताइए उज्ज्वला जी आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला है,
1: रही है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये सब चीजें?
1: हाँ।
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा ना।
1: जाना जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: क्योंकि
1: हाँ
0: वहां पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है ये।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली,
0: बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं धनु जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है।
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे।
1: 15 अगस्त तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: उठता था और
0: हाँ
1: नाश्ता वाश्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको। हाँ
1: हाँ, पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ, तो हम यहाँ के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह का सब कुछ बांटते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ,
0: झंडा
1: लड्डू
0: फहराया जाता था, है ना।
1: झंडा फहराया जाता था, सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग को स्कूल, सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है सुन
1: हाँ,
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा लगता। अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज।
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। जिसे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओ, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के

0: गायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धू और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
0: जी,
1: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया।
1: जी, तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं आपको बता दें, पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
0: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी, 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था, और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था।
0: जी,
1: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
0: श्रोताओं एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
1: तो श्रोताओं ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
0: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस

0: विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
1: जैसे तुम्हारे मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई,
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ, कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
6: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
6: मेरे साथियों, साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
5: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
6: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
7: लेकिन वो कैसे?
6: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
7: लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
4: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
3: हाँ, बताओ, हाँ,
7: बोलो, क्या

0: कांग्रेस सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
2: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ,
6: हाँ,
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी,

0: से पैसे नहीं आए इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
1: किताब न लाने पर 4 आने फाइन, फिर क्या हुआ?
0: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
2: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
0: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
2: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
1: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
0: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
1: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
0: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
1: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
0: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
1: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
0: ठीक है,
1: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
0: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
1: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
0: क्या?
1: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
0: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
1: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
0: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
5: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
6: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
5: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
6: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
5: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
6: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर

0: अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
1: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
0: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
1: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
0: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
1: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
0: जी,
1: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
0: उससे क्या होगा
1: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं? ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
2: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
3: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
4: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
4: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
4: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
4: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
3: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी

0: के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
1: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी सुनने वाला सेंग किसान भाई ने टाबरा ने माँ बेटा ने घना है तू मकबूल भैरो राम राम। देखो किसान भाई राम राम तो ही आप चौपाल में बैठा तो खे घर बीती पर बीती खेत खलिहान की बात करा तो अबार सावन को महीनों भी चाल रहे है आप खेती और खलिहान की बात करा करा तो खेती आप करा तो खेती के अंदर आपने कई बार देखो बिजली की भी जरूरत पड़े क्योंकि अगर ट्यूबवेल है ट्यूबवेल में खेती करा ट्यूबवेल हो तो आपने बिजली की जरूरत पड़े और भी कई जगह अपने बिजली की जरूरत पड़े तो भी मैं आप खेती में सौर ऊर्जा की उपयोगिता के बारे में बात करें कि सौर ऊर्जा आप वहाँ से फायदेमंद क्या ना खेती में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप कृषि पर निर्भर है। खेती में सिंचाई फसल की कटाई भंडारण और अन्य कृषि कार्य वास्ते ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ करे है। तो बिम्ब कहीं पहले सब किसान मुख्य रूप डीजल बिजली पर निर्भर रहा करता ज्यों खेती में लागत बढ़ती ऐसे समय में सौर ऊर्जा किसान वास्ते एक उपयोगी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन सामने आयो। सौर ऊर्जा सूर्य प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सोलर पैनल की सहायता सूर्य के प्रकाश ने विद्युतीय ऊर्जा में बदला जा सके। इन बिजली का उपयोग खेती में सिंचाई वास्ते पानी के पंप चलाने कृषि उपकरण वास्ते संचालित करने और फसल के भंडारण आदि में भी किया जा सके। खेती में सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग सिंचाई पंप सौर ऊर्जा सिंचाई पंप। खेती में सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है सोलर पंप के रूप में किया जाया करे। सोलर पैनल ने प्राप्त बिजली और पानी का पंप चलाया जाया करे ज्यों किसान खेती की सिंचाई कर सके और डीजल पर होने वाला खर्च कम कर सके। ज्यों क्षेत्र में बिजली यदि पूर्ति नियमित

आपूर्ति नियमित नहीं होया करे, वहाँ पर सौर पंप विशेष रूपों उपयोगी होया करे। खेती में लागत की कमी, डीजल ऊँ चलन वाला पंपा ने लगातार ईंधन की खरीदना पड़े, बिजली की लागत भी किसाना के वास्ते एक खर्च है, और सौर ऊर्जा का उपयोग करनो सूर्य का प्रकाश मुफ्त ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध होया करे। सोलर उपकरण लगाने की पारंपरिक लागत के बाद बैंक संचालन और रख रखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होया करे है। यूं लंबे समय में किसान की खेती की लागत कम हो सके। पर्यावरण संरक्षण, डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर सके। ज्यों विपरीत और सौर ऊर्जा स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। खेती में सौर ऊर्जा अपनाने वास्ते प्रदूषण कम करने में और पर्यावरण का संरक्षण में सहायता मिल कर है। फसल सुखाने और भंडारण में भी उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग फसल ने और कृषि उत्पादकों में सुखाने वास्ते भी किया जाए कर है। सोलर ड्रायर की सहायताओं अनाज फल सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादकों का नियंत्रित तरीकों सुखाया जा सकता है। ज्यों फसल खराब होने की संभावना कम हो जाएगा और किसान अपने उत्पादन में अधिक समय तक सुरक्षित रह सके है या रख सके अपना उत्पादन ने। और किसान भाई देखो, कृषि उपकरणों में भी उपयोग, सौर ऊर्जा के ऊँ छोटे कृषि उपकरण, पानी की मोटर, प्रकाश व्यवस्था, अन्य विद्युत उपकरण चलाया जा सके है। खेती और कृषि केंद्र पर सौर लाइट लगा रात में भी आवश्यक कार्य किए जा सके हैं। किसानों वास्ते लाभ, सौर ऊर्जा किसानों ने ऊर्जा के वास्ते एक वैकल्पिक और टिकाऊ साधन उपलब्ध कराया करे है। यूं डीजल और बिजली पर निर्भरता कम हो जाए करे। सिंचाई की सुविधा बेहतर होने के फलस्वरूप उत्पादन में भी सहायता मिलने करे है। ज्यों सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सौर ऊर्जा का एक बड़ा लाभ आ है कि ये नवीनीकरण ऊर्जा है। सूर्य की रोशनी लगातार उपलब्ध रहक रहे और इसका उपयोग बार बार किया जा सके। भारत जैसे देश में जहां वर्ष में अधिकांश समय पर्याप्त धूप मिल जा करे, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा की काफ़ी संभावना है। यूँ निष्कर्ष का ये कि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग किसान वास्ते आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टियों लाभकारी हो सके है। और सौर सिंचाई पंप, सोलर ड्रायर और अन्य कृषि उपकरण के माध्यमों किसान का स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सका। ज्यों खेती की लागत कम करने में, प्रदूषण घटाने और ऊर्जा की बचत करने में मदद मिल सके। इस वास्ते कृषि के विकास और किसानों की आय ने मजबूत बनाने वास्ते सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करना समय की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा अपनाएं, खेती को टिकाऊ और समृद्ध बनाएं। तो किसान भाई आज बात ही अपना कि सौर ऊर्जा यानी कि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग की तरीका हूँ अपना करा कितो अपने फायदों मिल रहे। अब आप थोड़ी सी बात करा भाई, आप देखो खेती में किसान हाँ, किसान के साथ साथ आप एक पशुपालक भी हैं, और पशुपालक इंसान जो किसान है वो देखो खेती में कृषि और पशुओं का दोनों का उपयोग होया करे कि आपके जो पशु मलमूत्र और गोबर वगैरह मिल रहे भी हूँ आपकी उपयोगी खाद मिल जा करे। और साथ साथ अगर आप छोटा मोटा व्यापार के रूप में काम लेवा तो दूध एवं डेयरी अवसंरचना का विकास होया करे। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखा करे। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक अपनी आय के वास्ते दूध उत्पादन पर निर्भर है। दूध केवल पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत ही नहीं है बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का भी प्रमुख आधार है। इस वास्ते दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ डेयरी अवसंरचना का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। डेयरी अवसंरचना में दूध के संग्रहण, परीक्षण, शीतकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार तक पहुंचाने की सुविधाएं शामिल होया करे। अच्छी अवसंरचना से दूध की गुणवत्ता बनी रहा करे, खराब होने की संभावना कम होया करे और किसान को उनके दूध का उचित मूल्य भी मिल सके। डेयरी अवसंरचना का महत्व है दूध एक जल्दी खराब होने वाला उत्पादन। यदि दूध को समय पर एकत्रित कर उचित तापमान पर सुरक्षित न रखा जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब होया करे है। इस वास्ते गाँव में आधुनिक दूध

0: कांग्रेस केंद्र और बल्क मिल्क कूलर जैसी सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। दूध ने ठंडा रखने वास्ते बीमे बैक्टीरिया की वृद्धि कम होया करे और दूध लंबे समय तक सुरक्षित रह सके है। इसके बाद दूध ने डेयरी संयंत्र तक पहुँचा कर पास्चुरीकरण पैकिंग और अन्य प्रक्रिया ने गुजारा जाया करे है। डेयरी अवसंरचना के प्रमुख घटक ही हैं दूध संग्रह, दूध शीतकरण, दूध प्रसंस्करण यंत्र और परिवहन और कोल्ड चेन। मेरे साथ पशु स्वास्थ्य और चारा व्यवस्था। डेयरी विकास केवल दूध के संग्रहण और संस्करण की तक सीमित नहीं, पशुओं वास्ते अच्छे चारे, स्वच्छ पानी, टीकाकरण, पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाएं भी आवश्यक है। स्वास्थ्य पशुओं वास्ते दूध का उत्पादन और गुणवत्ता में बेहतर होया करे। किसानों ने होने वाला लाभ कहीं है डेयरी संरचनाओं किसान विकास सू किसानों ने कई तरह का लाभ मिलया करे। दूध की नियमितता बिक्री के वास्ते स्थानीय बाजार उपलब्ध होया करे। दूध की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच होने के किसान ने गुणवत्ता के आधार के ऊपर उचित भुगतान मिल सके। प्रसंस्करण सुविधा के कारण दूध में विभिन्न उत्पादन बनाए रखने वास्ते जीव रोजगार और आय में नए अवसर पैदा होया करे। डेयरी सहकारी समिति भी किसानों ने एक संगठित बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करे। ज्यों छोटों और सीमांत किसान भी डेयरी व्यवसाय में नियमित आय प्राप्त कर सके है। तो किसान भैया तो देखो बातचीत तो ही और भी करा, लेकिन अब सुना संदेश।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो किसान भाई देखो, बार खेती में सौर ऊर्जा के बारे में आप बात करी, दूध डेयरी के बारे में आप बात करी और संदेश भी सुनिया। और किसान भाई देखो, आप गांव गोड़ जवान का कोई भाई सैंड मिल रहा भी बातचीत करें कर रहा, तो ग्राम दुखो सिखा एक किसान आपने खुदा बकस जी मिल लिया भी मैं बातचीत करी। तो सुनो अब बातचीत।

0: मैं समय समय पर कोई ना कोई जानकार बातचीत क्या करना। आज मांगे साहब में किसान है। नमस्कार साहब।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: साईं सा काई नाम आप रो?
1: खुदा बख्श नाम है।
0: खुदा बख्श जी गांव है दुक्कोसी।
1: गांव दुक्कोसी।
0: दुक्कोसी की बात करा कितो पुरानो गांव है?
1: पुरानो गांव है।
0: घणो पुरानो?
1: पुरानो।
0: आपकी पैदाइश बटेगी?
1: बिल्कुल।
0: कितनी उम्र होगी?
1: 50।
0: 50 साल होगी आपकी पैदाइश बटेगी?
1: बिल्कुल।
0: 50 साल पहली यानी आपका बचपना में और अब बार दुक्कोसी में की चेंजिंग आएगी?
1: चेंजिंग है,
0: बहुत चेंजिंग आ गई। बिजली पानी सही सुविधा होगी?
1: सब सुविधा होगी। पहले की नहीं हो?
0: पहले की को नहीं हो।
1: नाडी को पानी हो?
0: नाडी को। सड़क वगैरह?
1: सड़क पहले की नहीं, अब कच्ची पहले तो अब सड़क बन गई।
0: सड़क बन गई, बिजली भी फुल?
1: बिजली फुल है।
0: पानी नहर को आवे?
1: नहर को पानी।
0: वाह साहब वाह। खुदा बख्श जी बहुत भारी मतलब दुक्कोसी को बदलाव आ गया है।
1: दुक्कोसी को बदलाव
0: पूरा ध्यान है। जागरूक लोग भी है?
1: बिल्कुल जागरूक।
0: मैंने देखियो जागरूक भी है। आप मीनार खड़ा मस्जिद है?
1: मस्जिद दो मस्जिद बन गई। पहले एक
0: ही।

0: तो खेत की तैयारी फुल,
1: तो तैयारी
0: बादियों
1: गंवार बायोडो है,
0: गंवार बायोडो है। कितना टाइम पहले शुरू कर दो तैयारी?
1: तैयारी 12 महीना वो खेत नहीं उड़ते पाची शुरू
0: कर दिया, शुरू कर दो
1: बिल्कुल। साहब नहीं तो तैयारी कर जल्दी हुई,
0: सही बात है। खुदा बाकी जी सूट उड़ कर सफाई कर लो,
1: सफाई कर एकदम।
0: अच्छा, वो अपा के बीज वगैरह किसा काम मिलो?
1: बीज अलग अलग बीज है
0: घर में, एक तो कई जना घर का उठाड़ मोटर फिटर
1: राख देवे, नहीं दूजो ले लेवा,
0: नहीं तो थैली को बाजार लो,
1: थैली बाजार
0: लो, की जान रखो भी मैं
1: बिल्कुल
0: है ना, अभी भी मैं तारीख लिखी हुई है। हाँ हाँ सही बात है। खुदा भगत जी देखो आप भी की पढ़े लिखे हो?
1: हाँ सर।
0: कितनी पढ़ी?
1: मैं नौवीं तक,
0: नौवीं पढ़ छोड़ दी, पर धंधो ला गया,
1: पर धंधो ला गया।
0: देखो क्या कराना भाई, देखो घर की कोई मजबूरियां हुए
1: कई सर,
0: तो इंसान ने कोई धंधो पानी करना पड़े। यार अब बार एक नई चाल रहा मामला खेती बाड़ी में
1: जी,
0: कोई मशीनरी युग है, कोई किसी तरह का नई नई चीजों का प्रयोग कर रहा है, यानी कि खाद
1: बीज
0: हर तरह की नई चीजें की नवाचार चल रहे
1: हैं।
0: तो आपके गांव में भी कोई ट्यूबवेल लड़ा ना कोई नई चीज करी?
1: लेकिन सक्सेस को नाम खारो है,
0: खारो पानी है, खाली बरसा दी करो,
1: खाली बरसा दी।
0: तो ये पुरानी तरीकों खेती करो?
1: पुरानी तरीकों।
0: अच्छा,
1: नई तरीकों तो खाद बीज है लेकिन यूरिया काम कौन ले, वही जेन्यून खेती करे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप गोबर वाली खाद काम में लो, सब बढ़िया रहे
1: बिल्कुल।
0: यूरिया
1: नुकसान है धान ने वो।
0: अच्छा अच्छा, तो यूरिया नुकसान हो जाए, खेत खराब हो जाए,
1: खराब हो
0: जाए। कई जना कहवा ना भाई,
1: एक बार तो फसल हुई है बाद में खराब,
0: पर धीरे धीरे धीरे धीरे खेत खराब होने लग जा। अब कई जना कहवा है कि भाई मांग के मैं तो यूरिया लेवा जाने वा टूबे लड़ा।
1: हाँ टूबे लड़ा तो फसल ज्यादा वास्ते लेवे लेकिन वो कामयाब नहीं है,
0: कामयाब को नहीं है। बात सही है आपकी, तो अपन गोबर की खाद लेनी चाहिए,
1: खाद
0: सही बात है, जैविक खेती करनी चाहिए है को नहीं। आज का युग में जैविक खेती जरूरी है,
1: जैविक खेती में एक तो शरीर स्वस्थ रहे,
0: हाँ
1: नहीं तो बीमारी पैदा हुई,
0: बीमारी पैदा हुई, सही बात है। तरह तरह की आज देख रहे हैं आप बीमारियां हैं, कि कहीं तो कैंसर ज्ञान का खतरनाक रोग
1: हुई है, कैंसर रोग सब
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: और कोई छिड़काव करे बीमा भी?
1: छिड़काव है लेकिन करे
0: बीमे नुकसान ही है,
1: नुकसान
0: जहरीलो ही हुआ
1: है
0: को नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि खाद अपन गोबर ही काम में लेनी चाहिए और जैविक खेती करनी चाहिए है ना, पूरा बडेरा की तरीका
1: करता बिया नहीं करनी चाहिए,
0: बिया नहीं करनी चाहिए।
1: बडेरा था कि 100 साल जीवता स्वस्थ रहता, अब कदर है,
0: अब कट रहे हुए, अब तो समझ लो ज्यादा ज्यादा 60-70 साल में तो रोग निमट जाए,
1: बिल्कुल
0: कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई रोग,
1: कोई बीमारी हो जाए। अभी
0: बीमारियों तो ज्यादातर लोग ग्रस्त है क्योंकि खान पान
1: सही नहीं,
0: सही को नहीं। आप बात सही बात है, खान पान जो सही नहीं हुआ तो बच्चे यही बात है,
1: बीमारी पैदा हुई।
0: तो जिया नंबर आप खेती बाई
1: जी,
0: खेती बाई तो कितने टाइम के अंदर खेत ऊंचा जाये?
1: और 1.5-2 महीने बाद,
0: 1.5-2 महीना में। अब बार तो ये थोड़ी थोड़ी हुई हाल पानी पीछे कितना कितना टाइम में सिंचाई चाहिए?
1: पानी तो 15-20 दिनों चाहिए, बरसात ज्यादा हो जाए महीने में काट दे।
0: अच्छा,
1: कम बरसात हुआ 15 दिनों में चाहिए।
0: अब तो जरूरत है,
1: जरूरत घनी है लेकिन कुदरत की
0: बस वही बात है, कुदरत की जो करिश्मा है, कुदरत जो अगर चाहेगा तो बरसात
1: होगी बस।
0: किसान मेहनती हुआ,
1: किसान
0: खुदा भगत जी मेहनत करने वाला का भगवान अल्लाह साथ देवे,
1: साथ देवे बिल्कुल,
0: देवे कौन देवे,
1: मेहनत के मेहनत कोई फल है,
0: मेहनत को फल मीठो ही हुआ। आप मेहनत करता रहे तो निश्चित रूप देखो ना कोई ना कोई फायदा मिली। तो कहने का मतलब आया कि आदमी ने खेती के अंदर बडेरा का तरीके अपनाना चाहिए
1: बिल्कुल।
0: बाकी यू कुछ तो मशीन भी युग भी हो गया जाना,
1: तो घो फर्क पड़ गया,
0: फर्क पड़ गया, नया चार
1: हो गया
0: है को नहीं, नया नया युग हो गया, नई नई आजकल टेक्नोलॉजी चाल गई
1: नहीं
0: है को नहीं।
1: ना एक तो आसानी होगी,
0: आसानी होगी
1: बिल्कुल।
0: पहले आप लाठा काटता है को नहीं
1: बिल्कुल, अब तो
0: थ्रेसर हो गया, अभी
1: आसानी होगी,
0: आसानी होगी। और पहले आप हल जो होता तो कोई हाथों ऊँट ऊँट बढ़ दे
1: तो वो 4-4, 5-5 दिन लाए था एक खेत में
0: जद बजे,
1: अब तो 2 घंटा में खेत बार,
0: 2 घंटा में खेत बाद
1: ट्रैक्टर
0: तो ट्रैक्टर पे जापा किराए लो,
1: किराए लेवा और कई कई के घर का है,
0: कई का है, कई किराया लिया हुआ, किराए में क्या रुपया लेवा बा घंटा के
1: हिसाब पर लेवा बा, कई घंटा लेवे, कई बीघा लेवे
0: कोई घंटा लेवे, सही है। खुदा भगत जी देखो आदमी ने खेती करनी चाहिए,
1: करनी चाहिए।
0: कई लोग तो पढ़ लिख ना वो नौकरियों की तरफ भागे,
1: नौकरी कर ले तो भी खेती करनी चाहिए,
0: खेती करनी चाहिए क्योंकि अपना बडेरा को
1: काम है वो चालू रखना
0: चाहिए। और अपन को देश भी कृषि प्रधान देश है,
1: कृषि प्रधान
0: है को नहीं, और खास तौर पर राजस्थान के अंदर तो है को नहीं
1: काम है।
0: आपा की जो मिट्टी है बा क्या है?
1: मिट्टी नहीं बेकलू तो कौन है?
0: अच्छा किसी है?
1: बालू
0: बालू
1: मिट्टी है
0: ना,
1: मिट्टी है
0: सब के फसल मान ले।

0: सब मान लो।
1: अच्छा अच्छा,
0: मूंग बाजरा गंवार जवार
1: है ना, तो अब बाजरी आजरी बहुत है,
0: जवार बाजरी। अच्छा बाजरी, मूंग।
1: अच्छा सेंग बाजरा है ना, बढ़िया किस्म ले लो।
0: बिल्कुल,
1: कभी कोई रोग होगा हुआ तो बचे,
0: रोग हाल तक तो मान देगा कौन सा,
1: कभी आई
0: नहीं।
1: हाँ तो बढ़िया बात है, कई जन लोग
0: बरसात नहीं हुई भी देखे
1: भाई रोग है, अगर ऊपर वाला मेहरबान हो जावे
0: ऊपर वाला, कोई रोग नहीं है,
1: कोई रोग नहीं
0: तो सारा ही रोग है।
1: ये बात आपकी सही है, देखो कहना है कि जो चीज खाने को पूर्ति हो जावे ना
0: तो
1: मामला सही हो जाएंगे, क्योंकि बरसात है खेती के लिए खाने की चीज का ही बरसात है,
0: बरसात
1: तो बरसात अगर सही मिल गई,
0: बरसात मिल जाए सही तो सही दान हो जाए,
1: सही दान हो जावे, सही बात है आपरी। और खेत के आपा के चारों तरफ वो कहीं है बाढ़ है या कोई,
0: चारों तरफ जाली करी उड़ी है,
1: तारबंदी करो,
0: तारबंदी करो।
1: अब एक तारबंदी वास्ते भी अपन की
0: योजना चल रही है,
1: बीमा कोई फायदा उठायो,
0: 1000 रुपया मिले
1: है ना। हां
0: हां हां, सरकार तो देवे ये सुविधा करे है,
1: हर तरह की सुविधा देवे अपन,
0: सुविधा किसान वास्ते हर तरह की सुविधा करे।
1: हां देखो,
0: खाद देवे, बीज देवे,
1: खाद बीज
0: बिल्कुल सब,
1: आजकल कई गरीब आदमी हो जिनका जो
0: मकान
1: बनाने पैसा देवे
0: सब देवे, गवर्नमेंट व्यवस्था करी है,
1: व्यवस्था करे
0: बिल्कुल सरकार,
1: कृषि बीमा है,
0: कृषि बीमा हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन पहली वडेरा तो इतना जानता कौन है।
1: हाँ।
0: अब हर आदमी एक
1: जानकार हो गया, अब लोग जानने लग गया, जागरूक हो गया,
0: जागरूक हो गया।
1: आज की देखो रेडियो पर आप रेडियो सुनो,
0: बीमा कई सुने भी और सब
1: जानकारी देवा, अखबारा में आवे है, कोनी चौपालना भी लग गए,
0: चौपालना भी लग
1: गए, इस चीज में खुदा भगत की ध्यान रखना भी चाहिए, और जो भी सरकारी योजना हो फायदा उठाओ,
0: फायदा उठाना चाहिए,
1: और लोगों ने जानकारी भी देनी चाहिए, है कोनी। तो ये बात है, आज थे मांगे किसानों ने जानकारी दी, इस बात आप रो घनो घनो धन्यवाद,
0: ठीक है, धन्यवाद।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: किसान मैं देखो हमारा ग्राम दुकोसी का जो अपांगा भाई है खुदा भगत भी बातचीत सुनी, वो बताया कि भाई अगर खेती में अपन नई नई चीज़ों का प्रयोग करा तो निश्चित रूप में आपकी उपज बढ़ी, तो खेती में नवाचार भी होना चाहिए, लेकिन कहीं है कि जो बरसा की खेती करे वह नवाचार थोड़ा सा करण में रहा करे दूर, क्योंकि वजह यह है कि बैंगन ट्यूबवेल अगर नहीं है, ट्यूबवेल हुए तो ट्यूबवेल में नया नया यंत्र और नई नई चीज़ों का उपयोग कर और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ा सका। और देखो किसान भाई, यहाँ सोच रहा हूँ मकबूल भी बातें चीते करे, कोई गीत भजन सुनाओ को नहीं, तो आज आपने अली गन्नी और रागनी और बेंगी पार्टी रो गैडो सुनावा आ लोक गीत चांद चकोरी।

किसान भाई आप बार देखो अली गनी और रागनी वेंगी पार्टी और गैड और लोग गीत सुनियो और आप थोड़ी बात कराएं भाई। देखो सावन को महीना चल रहा है, इस महीना में बरसात तो थोड़ी हो ही रही है लेकिन थोड़ी जरूरत के मुताबिक थोड़ी कम है। लेकिन किसान भाई अपन वर्षा जल संरक्षण करना है, अपन खेत द रेण अपन प्रधानमंत्री जी भी किया कि खेत द रेण यानी पानी को इकट्ठा करना, बरसात का पानी ने संरक्षण करना ताकि अपन जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर सकें। आप खेत में डिग्गी बना लेवा या ढलान के आडे आप सिंचाई करा या आप ट्यूबवेल वगैरह अभी में पानी छोड़ना और या पच आप ना कोई यान का कोई कुआ वगैरह अभी में भी पानी आप इकट्ठा करा। तो क्यों को मतलब ये है कि अपन वर्षा का जो पानी है बिना इकट्ठा करा और जब जरूरत पड़े बिना काम में लेवा। तो बीयू कहीं है कि अपन बहुत ज़्यादा फायदा है। जमीन में भी पानी की कमी है तो आप ट्यूबवेल

के जरिए जमीन में भी पानी उतार सका। हाँ, तो किसान भाई आ चीज़ रो अपन पूरा ध्यान रखना है, और अपांगे बरसात को पानी अपांगे खेत के अंदर या अपांगे बड़े मोटा मोटा टांका बना ले बीम में भी अपा पाइप के जरिए पानी ने उतार सका। हाँ, तो वह अपांगे जरूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आवे। तो ये चीज़ रो अपन ध्यान रखना है, पानी ने व्यर्थ नहीं जावने देना है, और ये पानी ने अपन ने इकट्ठो करना है। इकट्ठो कर बिना जब जरूरत पड़े भी समय अपन ने इन काम में लेना है। तो किसान भाई अब बात चीत हुई आज, और आप जानो ही हो कि घड़ी मैं बन जोड़ा हाँ, तो अब घड़ी कह रही है कि मकबूल भाई आपने रुकनो पड़ी, तो आप मकबूल भाई ने दिराओ सीख करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिकवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आज की दिनांक है 14 अगस्त, और आज हम एक ख़ास दिवस मना रहे हैं। ये दिनांक हम सभी के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 1947, ये आज़ादी की पूर्व संध्या। एक तरफ तो भारत स्वतंत्रता का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ देश के विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। परिवार बिछड़े, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, और असंख्य लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। और इसी पीड़ा और विस्थापन की स्मृति को याद करने के लिए 14 अगस्त को, यानी आज ही के दिन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें हम इसके इतिहास की, तो हमारा उद्देश्य किसी समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि उस दौर की त्रासदी से सीख लेना होना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि जब समाज में अविश्वास, कटुता, अफवाहें और आपसी दूरी बढ़ती है, तो उसका असर केवल वर्तमान पर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रभावित होती है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इतिहास को भावनाओं के साथ साथ समझदारी और संवेदनशीलता से पढ़ें। हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की असली ताकत उसकी विविधता में है। अलग अलग भाषाएँ, संस्कृतियाँ, परम्पराएँ और विचार भारत को समृद्ध बनाते हैं। और बात करें युवाओं की, तो दोस्तों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आज का युवा सिर्फ भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि ये आज के समाज का सक्रिय हिस्सा भी है। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है सही इतिहास को जानना और समझना। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी तस्वीर, वीडियो या संदेश कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन हर वायरल जानकारी सच हो ये जरूरी नहीं। इसलिए युवा साथियों, किसी भी संवेदनशील ऐतिहासिक या सामाजिक मुद्दे पर कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सत्यता आपको जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि एक गलत जानकारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को प्रभावित कर सकती है। और दोस्तों, दूसरा, आपको नफरत नहीं बल्कि संवाद करना चाहिए। अगर विचार अलग हैं तो बातचीत कीजिए, अगर मतभेद हैं तो तर्क कीजिए, लेकिन असहमति को दुश्मनी में बदलने से बचिए। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग विचारों, संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं।

और युवाओं को ऐसे संस्कृति को मजबूत करना है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, भाषा या क्षेत्र से पहले उसकी इंसानियत से हो। और साथ ही दोस्तों, विभाजन की स्मृति हमें ये सोचने का अवसर देती है कि आज हम अपने आसपास क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी के बारे में बिना जाने उसके प्रति धारणा बना रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर किसी समुदाय के बारे में अपमानजनक बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या हम अफवाहों को सच मानकर दूसरों तक पहुँचा रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि देश की एकता केवल बड़े बड़े भाषणों से नहीं बनती है, ये हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से बनती है। और फ्रेंड्स, इतिहास को याद करना केवल अतीत को देखने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी है। इसीलिए हम इतिहास के दुखद अध्यायों को नफरत का कारण नहीं बल्कि शांति, भाईचारे और सद्भाव की प्रेरणा बनाएं। अपने दोस्तों के साथ सकारात्मक संवाद करें, फेक न्यूज से बचें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। और सबसे जरूरी कि अपने देश की विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत समझें। तो दोस्तों, संदेश यही है कि इतिहास को भूलना नहीं है, इतिहास से नफरत सीखनी नहीं है बल्कि इतिहास से समझदारी सीखनी है। और विभाजन की पीड़ा हमें ये याद दिलाती है कि शांति, एकता और इंसानियत कितनी अनमोल है। हमें ये आज संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपनी डिजिटल दुनिया तीनों में जिम्मेदारी दिखाएंगे, क्योंकि देश का भविष्य केवल संसद, सरकार या संस्थानों से नहीं बनता। देश का भविष्य हम सब मिलकर बनाते हैं और इसमें हम युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की। फ्रेंड्स, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी इमारतों, आधुनिक तकनीक या फिर मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती है। किसी राष्ट्र की असली ताकत उसके जागरूक, शिक्षित, जिम्मेदार और मेहनती नागरिकों से ही बनती है। और जब बात भारत की हो तो हमारे युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है, यानी हमारे पास एक ऐसी युवा शक्ति है जो अगर सही दिशा में आगे बढ़े तो देश के विकास को नई गति दे सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि युवा देश के विकास में क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है। एक युवा अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेकर, अपने कौशल को विकसित करके और अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करके भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है। नई तकनीक, स्टार्टअप, स्वरोजगार और नवाचार के माध्यम से युवा नए अवसर पैदा कर सकते हैं। और अगर कोई युवा अपने गांव या शहर में कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है और उसके साथ कुछ और लोगों को रोजगार मिलता है तो वो केवल अपना भविष्य ही नहीं बना रहा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा होता है। साथ ही दोस्तों, आज का समय केवल डिग्री का नहीं है बल्कि ज्ञान और कौशल का भी है। युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार नए नए कौशल सीखने चाहिए, जैसे डिजिटल तकनीक, कंप्यूटर, संचार कौशल, भाषा, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण। क्योंकि जब युवा सक्षम होगा तभी तो हमारा राष्ट्र सक्षम होगा, है कि नहीं? हमें भी ये समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होता बल्कि शिक्षा हमें समस्या को समझने, समाधान को खोजने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। आज के युवा के हाथ में स्मार्टफोन है और उसके पास दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच है। सोशल मीडिया युवाओं के लिए मनोरंजन का माध्यम तो है ही, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी भी जरूरी है दोस्तों। किसी भी खबर या पोस्ट को बिना जांचे आगे बढ़ाना बिल्कुल सही नहीं है। फेक न्यूज़, अफवाहें और गलत जानकारी समाज में भ्रम पैदा कर सकती है। इसीलिए एक जिम्मेदार युवा वही है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर और सकारात्मक तरीके से करे। फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण केवल सरकारी नौकरी करना या राजनीति में आने तक सीमित नहीं है। अगर कोई युवा अपने आसपास स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करता है, रक्तदान शिविर में सहयोग करता है या फिर ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करता है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करता है या फिर अपने गांव में किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए लोगों को जोड़ता है, तो ये सभी राष्ट्र सेवा ही तो है। क्योंकि समाज में बदलाव हमेशा बड़े स्तर से शुरू नहीं होता, कई बार एक व्यक्ति की छोटी सी पहल भी बड़ा परिवर्तन ला

सकती है। और दोस्तों, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी भी बेहद ज़रूरी है। युवा देश के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना और दूसरों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करना, ये सभी एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य हैं। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं और देश के मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, युवाओं को सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा भी बनना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि देश में ये समस्या है, सरकार को ऐसा करना चाहिए और व्यवस्था को वैसा करना चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार युवा खुद से भी पूछता है कि मैं इस समस्या को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और यही सोच बदलाव की शुरुआत करती है। अगर सड़क पर कचरा है तो केवल शिकायत करने के बजाय हम स्वयं कचरा न फैलाने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद चाहिए तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई गलत जानकारी फैला रहा है तो हम बिना विवाद के सही जानकारी साझा कर सकते हैं। यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक मजबूत समाज बनाती है। तो दोस्तों, आपके पास ऊर्जा है, नए विचार हैं, सीखने की क्षमता है और कुछ नया करने का उत्साह है, इसलिए अपनी युवा अवस्था को केवल समय बिताने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में लगाइए। अपने सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी असफलताओं से सीखिए और आगे बढ़िए। दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां युवा केवल अपने भविष्य के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि देश के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। अब लीजिए, आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये एनर्जेटिक सॉन्ग।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट सिनेमा इस हफ्ते की। दोस्तों, सिनेमा जो है सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, एक अच्छी फिल्म हमें हंसाती है, भावुक करती है और सोचने पर मजबूर करती है, और कई बार समाज और देश को देखने का हमारा नज़रिया भी बदल देती है। और जब बात देशभक्ति की फिल्मों की हो तो भारतीय सिनेमा का सफ़र बेहद खास रहा है। कभी फिल्मों ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को पर्दे पर उतारा, तो कभी सैनिकों के साहस को सलाम किया, और कभी आम नागरिक की जिम्मेदारी को देशभक्ति से जोड़कर दिखाया। तो दोस्तों, आज हम सिनेमा इस हफ्ते में देशभक्ति पर आधारित सदाबहार फिल्मों और आज के युवा सिनेमा की बात करेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्होंने देशभक्ति को अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। मदर इंडिया जैसे फिल्म ने संघर्ष, परिवार और जिम्मेदारी को केंद्र में रखा था। हकीकत ने युद्ध और सैनिकों के साहस को भावनात्मक तरीके से सामने रखा। उपकार ने किसान और जवान दोनों को देश की ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। वही क्रांति जैसे फिल्मों ने स्वतंत्रता संग्राम की भावना को बड़े पर्दे पर जीवंत किया था। इसके बाद बॉर्डर, LOC कारगिल, स्वदेश और रंग दे बसंती, उई द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह जैसे फिल्मों ने

देशभक्ति को अलग अलग नजरिए से दर्शकों तक पहुंचाया था। और इन फिल्मों की खासियत यह है कि देशभक्ति केवल झंडा लहराने या फिर देश के लिए नारे लगाने तक सीमित नहीं दिखाई गई। कई फिल्मों ने ये सवाल भी उठाया कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के प्रति हमारी भूमिका क्या होती है। फ्रेंड्स, पहले देशभक्ति की फिल्मों में अक्सर सीमा पर खड़े सैनिक, युद्ध और दुश्मन से मुकाबला मुख्य विषय हुआ करते थे, लेकिन आज सिनेमा में देशभक्ति का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। आज देशभक्ति का मतलब है ईमानदारी से अपना काम करना, देश के कानूनों का सम्मान करना और समाज में भाईचारा बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना और साथ ही देश की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना। यानी आज की फिल्मों में ये संदेश देखने को मिलता है कि देशी प्यार सिर्फ सीमा पर जाकर ही नहीं बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिम्मेदार नागरिक बनकर भी किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं युवा सिनेमा की। आज की युवा पीढ़ी का सिनेमा से जुड़ाव पहले से बहुत अलग है। आज फिल्में केवल थिएटर तक सीमित नहीं हैं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल माध्यमों ने फिल्मों और वेब कंटेंट को युवाओं तक बेहद आसानी से पहुंचा दिया है। युवा दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते बल्कि वे ऐसी कहानियां भी देखना चाहते हैं जिसमें रियल लाइफ की समस्या और युवाओं के सपने, करियर, दोस्ती, परिवार, सामाजिक बदलाव और देश से जुड़े मुद्दे दिखाई दें। तो आज का युवा सवाल करता है कि वो कहानी में सिर्फ नायक को जीतते हुए नहीं देखना चाहता बल्कि ये भी जानना चाहता है कि के सामने आने वाली समस्या का समाधान कैसे होगा। आज की फिल्मों में कई ऐसे विषय दिखाई देते हैं जो कुछ वर्ष पहले तक मुख्य धारा के सिनेमा में कम दिखाई देते थे, जैसे कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल, बेरोजगारी, मानसिक दबाव, सामाजिक असमानता, पर्यावरण, तकनीक और छोटे शहरों के युवाओं के सपने। इन सभी विषयों ने सिनेमा में अपनी जगह बनाई है और यही बदलाव युवा दर्शकों को फिल्मों से और अधिक जोड़ता है, क्योंकि जब कोई युवा स्क्रीन पर अपने जैसे किसी किरदार को संघर्ष करते हुए, असफल होते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि मेरी जिंदगी से भी जुड़ी है। अब आपको ले चलते हैं फिर से फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी सखियों का और जो है श्रोता है उन सभी का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। सखियों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश जो है स्वतंत्रता की, आज़ादी की जो है तैयारी कर रहा है और खुशी और हर्षोल्लास के साथ है। साथ ही भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। सन 1947 में इस दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। साथ ही 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस दिन देश अपनी आज़ादी का 19वां जो वर्ष है पूरा कर लेगा और 80वें वर्ष में प्रवेश करते हुए एक ऐतिहासिक पर्व मनाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष इस दिन के भारत के जो है प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की लाहौरी गेट के ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों ने जो है दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएँ भी सामने आई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीय इस दिन काफ़ी जो है अपनी अलग तरह की पोशाक पहनते हैं, सामान घरों और वाहनों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इसे बड़ी उत्सुकता के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, हमने अभी एक प्यारा सा गाना सुना था। हमने लिया था कर्मा फिल्म से। आवाज़ें थी कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की। अब प्रोग्राम में हम चर्चा शामिल कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषाहार। राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, बोनापन, कम वजन और एनीमिया के स्तर को कम करना है। साथियों, मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्य की बात करें तो कुपोषण घटाना, एनीमिया में कमी, लक्षित समूह, पोषाहार वितरण और इसकी विशेषताएँ हैं। तो कुपोषण किस प्रकार से घटाया जा सकता है? देखिए, बच्चों में बोनापन और अल्प पोषण की दर को कम करके जो है बच्चों में कुपोषण की दर को कम किया जा सकता है। साथ ही एनीमिया की कमी को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए, महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में खून की कमी एनीमिया के स्तर को सुधार सकते हैं। साथ ही लक्षित समूह की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां इसमें शामिल हैं। साथ ही पोषाहार वितरण और विशेषताओं की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं वहां पौष्टिक आहार, टेक होम राशन और पूरक पोषण स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है ये पोषण। साथ ही पोषण ट्रैकर की बात करें तो तकनीक के इस्तेमाल से वास्तविक समय पर लाभार्थियों और पोषाहार की निगरानी भी की जाती है। जन आंदोलन, पोषण माह और पखवाड़ा कार्यक्रमों के जरिए समुदाय में स्वास्थ्य और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियो, हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आज सौंदर्य टिप्स, और सौंदर्य टिप्स में हम शामिल कर रहे हैं बारिश के मौसम में कैसे बढ़ाएं अपने बालों की खूबसूरती। तो सखियो, अपने हर किसी को अपने बाल जो है अच्छे लगते हैं, लंबे काले घने बाल, हमारी जो जुल्फे हैं वो हमारा व्यक्तित्व बयां करती है, साथ ही हमारी सुंदरता को भी दर्शाती है। तो

अपने बालों को किस तरह से आप सुंदर बना सकते हैं, तो इसके लिए अभी चल रहा है मानसून का मौसम, और ऐसे मौसम में आप जो है अपने बालों को कुछ ऐसे तरीके अपनाकर ठीक तरीके से रख सकती है, उन्हें सुरक्षित और खूबसूरत बना सकती है। सखियों, बरसात के मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बाल जो है चिपचिपे, कमज़ोर और झड़ने लगते हैं। बालों की खूबसूरती और सेहत बनाए रखने के लिए स्कैल्प को साफ रखें, बारिश के पानी में जो है बालों को भिगोने से बचें, और हल्के सल्फेट मुक्त जो शैम्पू आते हैं, माइल्ड जो शैम्पू आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। बालों की सफाई और धुलाई भी करें, क्योंकि नियमित अपने बालों को धोएं। हफ्ते में 2 से 3 बार सोम में जो माइल्ड शैम्पू आते हैं उनका यूज़ करें, ताकि पसीना और गंदगी निकल जाए। साथ ही बारिश का पानी हटाएं। यदि हम भीग भी जाते हैं, हमारे साथ हमारे बाल भी तो भीगते हैं, इसलिए हमें अपने बालों को भिगोने से बचाना चाहिए। या तो साथ में अपने छाता रखिए या स्कार्फ रखिए, जिससे आपके बाल कम भीगें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होता है ऐसा साधन, तो हमारे बाल भीग जाते हैं, तो तुरंत ही अपने घर जाकर सादे पानी से अपने बालों को धोएं और साफ़ तौलिए से उनको पोंछकर अच्छे से कंघी करें। साथ ही अगर बालों को धोएं तो कंडीशनर जो है अपने बालों में आप लगाते हो, आप यूज़ करते हो, तो उसको अच्छे से छोड़ें, मतलब अच्छे से बाल धोएं कंडीशनर लगाने के बाद, ताकि अपने जो बालों की लंबाई है उस पर कोई इफेक्ट ना हो और जड़ों में भी डैमेज ना हो। साथ ही मानसून में क्या करें और क्या नहीं करें, सखियों, गीले जो बाल हैं उनको कभी ना बांधें, क्योंकि गीले बाल सुरक्षित नहीं रहते हैं, उनमें जो है डैमेज होने का खतरा रहता है, इसलिए बालों को अच्छे से सुखाकर फिर चोटी बनाएं। साथ ही चौड़े दांतों वाली कंघी का यूज़ करें, ताकि आपके बाल जो है उलझे नहीं, सुरक्षित रहें। हीट स्टाइलिंग होती है उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो हेयर ड्रायर है या फिर स्ट्रेटनर जो आजकल कराते हैं बालों को, उससे भी बचें, क्योंकि वो आपके जो बाल है उसको डैमेज कर देती हैं। साथ ही जो असली रंग होता है बालों का वो भी चला जाता है, साथ ही उनमें रूसी आ जाती है। और कुछ ऐसे घरेलू उपाय करके भी आप अपने बालों को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे हल्का जो तेल है सरसों का, या फिर जो भी आप तेल यूज़ करते हैं उसको गर्म करके आप अपने बालों में तेल की मालिश भी कर सकती है, अपनी जो उंगलियां होती हैं उनकी टों से। साथ ही हेयर मास्क का उपयोग कर सकती हैं, जैसे अंडे आते हैं, अंडे को आप घर पे लाएं और साथ ही एक कटोरी दही में एक अंडा मिलाकर अपने बालों को हेयर मास्क के रूप में अच्छे से बालों में लगाएं, और फिर कुछ ऐसा कवर अप कर दें जिससे आपके जो है बाल, जो दही या फिर अंडा, जो मास्क आपने लगाया है वो आपके कपड़ों पर ना चिपके, तो उससे भी जो है आपके बाल है बिल्कुल सुरक्षित होंगे और डैमेज होने से बचेंगे और रिपेयर भी हो जाएंगे। अब ले चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवाते हैं ये गीत।

सखियों, हमने अभी प्यारा सा गीत सुना था। अब घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM बैंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश। फिल्म का नाम कुदरत का कानून, आवाज़ अलका याग्निक की है।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: अगली पेशकश हमने ली है फिल्म शहीद से। आवाजें हैं वीर राजेंद्र और साथियों की।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: यह फिल्म संगीत की अगली पेशकश, फिल्म का नाम शहंशाह।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का सिरमी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। यह है माटी के स्वर कार्यक्रम की पहली पेशकश। आवाज़ झेवरचंद टेलर की है।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र। यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: यह हेमाटिक स्वर कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाज मुंशी राम सिनोद की है।

माटेकसवार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये सिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ ही देर में 7 बजे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लाल किले पर होने वाले समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति रखी गई है। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा।

समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2,500 कैडेट्स तथा माय भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को भी लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस कल प्रदेश भर में गौरव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 80वें स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में होगा। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह में राज्य के मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में होने वाले समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह विभिन्न जिलों में अन्य मंत्री तिरंगा फहराएंगे। शेष रहे जिलों में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण करेंगे। इस अवसर पर वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

0: राज्यपाल ने सभी से भाईचारा बनाए रखने और देश प्रदेश की उन्नति के लिए भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि ये दिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश में आज कई आयोजन हुए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर विभाजन विभीषिका पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। उधर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पैनलों के माध्यम से 1947 में हुए विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को दर्शाया गया है। 12वीं संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों का स्मरण किया गया। इस बीच आज झुंझुनू, डीग और नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई और वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। डीग में तिरंगा यात्रा पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिसकर्मी और अग्निशमन सेवा कर्मी शामिल है। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सादुल शहर दौरे पर रहे। अनूपगढ़ की धान मंडी में आयोजित जनसभा से श्री शर्मा ने 389 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून में मरम्मत कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगमों को 10-10 करोड़ रुपए, नगर परिषदों को 3-3 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सादुल शहर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चूनावड़ में दुग्ध शीतलन संयंत्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं चूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ होगा।
0: मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ में बीएसएफ जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठ तथा तस्करी रोकने में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। श्री शर्मा ने बीएसएफ चौकी की बॉर्डर आउटपोस्ट और सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग को आधुनिक बनाने के लिए 2386 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 954 साधुवाली बनवाला और राष्ट्रीय राजमार्ग 54 बनवाला हनुमानगढ़ को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच आवागमन सुगम और तेज हो सकेगा। इसके पूरा होने से लालगढ़ जट्टा

0: और पक्का सहराना व्यस्त क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भटनेर किले और पुरातात्विक स्थल कालीबंगा म्यूजियम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि सड़कों का मजबूत नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से मॉनसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इस बीच बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सिरोही सहित कुछ स्थानों पर बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा करीब 10 सेंटीमीटर पानी निम्बाहेड़ा में बरसा। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह सामान्य से करीब 30% से ज्यादा पानी बरसा। इससे अब तक हुई वर्षा सामान्य से 5% कम रह गई है। राज्य में अब तक 8 जिलों में अत्यधिक बरसात हुई है, 20 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 450 आंशिक रूप से भर गए हैं और 33 बांध लबालब है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। जालौर जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के महाविद्यालयों, मदरसों सहित शैक्षणिक संस्थानों में व्यायाम प्रदर्शन, पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फाइनल अभ्यास हो रहा है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम जालौर में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इस बीच हर ओर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगी छटा नजर आ रही है। 9 तारीख से शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। तिरंगा रैली, प्रभात फेरी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर से तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली कॉलेज सर्किल, राजेंद्र नगर और अस्पताल चौराहा होते हुए नगर परिषद परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना से जुड़ने का संदेश दिया गया। नगर परिषद सभा भवन में स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित 2 दिन की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले के भीनमाल शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत 20 करोड़ 99 लाख रुपए के काम प्रस्तावित हैं। इस संबंध में पंचायत समिति में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव लिए गए। परियोजना के तहत एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़े काम किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए अटल प्रगति पथ योजना के तहत जिले के 5000 से अधिक आबादी वाले 28 गांवों में 56 करोड़ रुपए की लागत से 36.25 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों से जालौर, रानीवाड़ा, सांचौर और आहौर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों को सड़क सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। योजना के मुख्य नोडल अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव देवेश देवल ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना और

0: ने बालिकाओं को बेबी किट प्रदान की। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न गृहों का निरीक्षण भी किया गया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए माय भारत जालौर की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें समूह नृत्य, लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, शॉर्ट फिल्म, स्लोगन लेखन, वाद विवाद और कविता प्रतियोगिताएं हुई। विद्यार्थियों और युवाओं ने नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त जीवन के संदेश को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से रखा। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से पौधरोपण किया जा रहा है। लोगों को पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव के रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए और पूजा अर्चना की गई। जिले में इस बार बारिश कम होने से जल स्रोतों में पानी की आवक प्रभावित हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद किसानों ने ग्वार, मूंग, मोठ, मतीरा और बाजरा की बुवाई की थी, लेकिन लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों को पानी की जरूरत महसूस हो रही है। जिले को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। जालौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अबू थोड़ी देर पछे देश ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किलारी प्राचीर हूँ तिरंगो झंडो फहरावेला। स्वाधीनता दिवस रो राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी काम सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। और प्रदेश का घणखर हल्का माए काल हूँ बिरखा माए कमी रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वतंत्रता दिवस काल गौरव और उमाव सागे मनायो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अबू थोड़ी देर पछे 7 बजा देश ने संबोधित करेला। राष्ट्रपति रा संबोधन रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल माथा करियो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दिल्ली रा ऐतिहासिक लाल किला माथा तिरंगो झंडो फहरार देश ने संबोधित करेला। ई मौके राष्ट्रीय स्तर रा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहली दफा राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही गायो जावेला।

ई पाछे राष्ट्रगान जनगण मन गायो जावेला। जलसा माए फौज, नौसेना और वायुसेना रा करीब 2500 कैडेट और माई भारत रा स्वयंसेवक हिस्सो लेवेला। देश रा न्यारा न्यारा हलकाऊं करीब 5000 खास पावणा नई ई कार्यक्रम माए शामिल हुएवन रो न्योतो दियो जियो है। 80वां स्वाधीनता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम माए राख्यो जावेला, जठे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगो झंडो फहरार जनता ने संबोधित करेला। सगला जिला मुख्यालय माथे स्वतंत्रता दिवस जलसा सागे मनायो जावेला। बीकानेर रा कार्यक्रम माए राजस्थान पुलिस सर कारागार विभाग रा चुनी जिया अहलकारा और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। कार्यक्रम माए देशभक्तियों भरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां फैला। जिला मुख्यालय माथे वेवन वाला कार्यक्रम माए न्यारा न्यारा मंत्री झंडो फहरावेला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा माए वेवन वाला जलसा माए राष्ट्रीय ध्वज फहरावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर और जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर माए तिरंगो झंडो फहरावेला। कई जिला माई मंत्री झंडो फहरावेला, जबकि कुछ जिला माए जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुर रा लोकभवन माए राख्या जावन वाला खास कार्यक्रम माए झंडो फहरार होशियार विद्यार्थियां रो मान करेला। राज्यपाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

0: बिहार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जनता ने स्वतंत्रता दिवस री बधाई और शुभकामनावां दीनी है। राज्यपाल वाना संदेश में सगलाऊं भाईचारो बनायो राखता थका विकसित भारत बनावण सारू भागीदारी निभावण री अरज कीनी। वह जनताओं हर घर तिरंगा अभियान राते देश रा एका और स्वाभिमान री निशानी तिरंगो झंडो आप आपरा घर माथे जरूर फहरावण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मारा संदेश में कहो कि ओ दिन देश रा एका अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू हमेशा समर्पित रहवण री सीख देवे है। वह जनताओं देश रा भला न सबू ऊंचो राखता थका सामाजिक समरसता री भावना ने मजबूत करण और पानी बचावण रा काम माय भागीदारी रो संकल्प लेवण री अरज कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी स्वतंत्रता दिवस री शुभकामनावां देता थका देश री आजादी सारू लड़बा वाला स्वतंत्रता सेनानिया ने नमन कीनो। इन बीच स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंज आज न्यारी न्यारी ठोणा सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। नागौर में बीएसएफ री 1066 आर्टिलरी रेजिमेंट री ओर तिरंगा रैली निकाली जी। जयपुर मेट्रो री ओर बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन माथे देश प्रेम री भावनाओं जुड़ियो सेल्फी पॉइंट बनाई जियो है जठे मुसाफिर फोटो खिंचवार सोशल मीडिया माथे अपलोड कर सके है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रे मौके प्रदेश माए कई कार्यक्रम रखी जिया। जयपुर रा अल्बर्ट हॉल माए देश रा बंटवाराओं जुड़ी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जी है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय माए प्रदर्शनी लगार पैनलान रे जरिए साल 1947 माए भिया देश रा बंटवारा रे दौरान लोगां री पीड़ा दूजी ठौर जावण और संघर्ष रो दर्शाव करी जियो है। मारा माए संगोष्ठी राख हर देश रा बंटवारा रे दौरान जान गंवावण वाला ने याद करी जिया। इन बीच आज झुंझुनू डीगर नागौर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा तिरंगा रैली निकाली जी और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाई जियो। डीग माए निकाली जी तिरंगा यात्रा माथे जनता और कारोबारी संगठना री ओर फूलों ने बरसात करी जी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्री गंगानगर रा सादुल शहर माए निकाली जी तिरंगा यात्रा माए शामिल हुआ। केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस रे मौके पुलिस अग्निशमन सेवा होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा रा 1057 कर्मचारियों ने वीरता और सेवा पदक देर नवाजण रो ऐलान कीनो है। गृह मंत्रालय आज वीरता रो दर्शाव करण वाला सारू 301 लोगों री लिस्ट जारी कीनी। वीरता पदक जिंदगी और माल असबाब री हिफाजत करण अपराध रोकण और अपराधियां ने पकड़बारे दौरान खास हिम्मत बतावण वाला ने दिया जावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज श्री गंगानगर जिला माए अनूपगढ़ और सादुल शहर रो दौरो कीनो। अनूपगढ़ री धानमंडी माए राखी जी जनसभा माए श्री शर्मा विकास रा 389 करोड़ रुपयों भत्ता खर्च वाला कामारी नींव रखी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपिया। ई मौके वे प्रदेश माए चौमासा री ऋतु माए मरम्मत रा कामा सारू रकम देवण रो ऐलान कीनो।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए, प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता।
0: मुख्यमंत्री सादुल शहर माई जनसभा ने संबोधित कीनी। इस दौरान वह चुनावड़ माए दूध ठंडो करण रो कारखानो खोलण रो ऐलान कीनो।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं जूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहां होगा।

0: मुख्यमंत्री अनूपगढ़ में बीएसएफ रा जवाना सागे बातचीत कीनी वैदेश हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत करण सागे घुसपैठ और तस्करी रोकण में बीएसएफ रा काम रे सराहना कीनी। श्री शर्मा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सागे बीएसएफ चौकी री बॉर्डर आउटपोस्ट और फौजी असलाह री प्रदर्शनी नई निरखी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सड़क ने और बेहतर बनावण सारू 2386 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। इनु नेशनल हाईवे नंबर 954 साधुवाली बनवाला और नेशनल हाईवे नंबर 54 बनवाला हनुमानगढ़ माथे चार लेन री सड़क बनाई जावेला। वो काम पूरो वेवणु लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना माए यातायात रो दबाव कम वेला और जाम री समस्या आगी वेला। ईसा गई भटनेर रा किला और पुरातात्विक ठौड़ कालीबंगा म्यूजियम समेत दूजी ठौड़ा ताई पहुंच आसान बनेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आ परियोजना मंजूर करण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रो आभार जतायो है। अरब मौसम राज्य रा घणखर हल्का माए काल और चौमासा री बिरखा मंदी पड़बारा आसार है। हालांकि उत्तराद और उगणी हल्का माए कठे कठे बिरखा रा आसार है। ए बीच लाडला 24 घंटा माए चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और सिरोही समेत कठे कठे बिरखा भी सबु बत्तो करीब 10 सेंटीमीटर पानी चित्तौड़गढ़ जिला रा निम्बाहेड़ा माए बरसियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब लाडला सप्ताह सामान्य करीब 30% बत्तो पानी बरसियो। राज्य में हाल ताई 8 जिला में जोरदार 20 जिला में सामान्य और 13 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो है। छोटा मोटा 693 बंधा में 450 थोड़ा घना भरिया है जबकि 33 बंधा पूरा भर गया है। काल सावन री तीज हरियाली तीज रा तौर मनाई जावेला। खास तौर महिलावां रो पर्व मानी जावण वाली हरियाली तीज रे मौके मेहंदी लगावण झूला झूलण और लोक गीतां रो खास महत्व है। कई ठोणा मेला ही भरे है। तीजों पहले आज लोक पर्व सिंजारो मनायो जा रियो है। इनमाए नुवी पढ़नी लुगाईयां ने ससुराल री ओर सिंजारो भेजो जावे है। जिनमाए खास तौर लहरिया सजवा संवरवा रो सामान चूड़ियां और घेवर शामिल वे है। तीज रे मौके पर्यटन विभाग री ओर राजधानी जयपुर माए काल और 16 अगस्त ने तीज री सवारी निकाली जावेला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह रा 16 अगस्त ने चित्तौड़गढ़ और अलवर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारी रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो व संबंधित जिला प्रशासन ने सगली जरूरी समस्याओं टेम सर पूरी करण रा हुकम दीना। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा मु थोड़ी देर पछे देश ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किलारी प्राचीर तिरंगो झंडो फहरावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी कामा सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। और प्रदेश रा घणखर हल्का माए काल बिरखा माए कमी रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।
2: कृपया हमारे विशेष प्रतीक्षा कीजिए।
3: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने ISI मार्क देखकर ही खरीदें क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता

पराधीनता के बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़

होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा तो न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को, समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 69 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030
20-30 के

कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुकान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए

विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुँच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन

आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दई, देश मंटे मनुष्य लोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड एब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual.

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's Address to the Nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिन्मय चैनल है। नीचे सुनिए देशभक्ति गीत। यह पेशकश आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम मुझे जीने दो।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, जिसे सुनिए फिल्मी कव्वालियाँ। और यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। आवाज़ हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

ये कवाली अभी आपने सुनी हमने ली थी फिल्म धर्मकांटा से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, और ये है अगली पेशकश। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म में कव्वालियां। आप सुन रहे थे आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिन्ह चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। डीजे सुनिए, गाने नए जमाने के। यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम कॉकटेल।

0: ये गीत अभी आपने सुना हमने लिया था फिल्म कॉकटेल से, आवाज अरिजीत सिंह की थी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: यह है अगली पेशकश गाने नए जमाने की, फिल्म का नाम 80।

आवाज है डिंपल साइकिया और प्रतिज्ञा शर्मा की। साथ में आवाज सवरंद किरकिरे की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए

0: ये नई बुलंदियां
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022233।

0: गाने नए जमाने के अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में

0: देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव

0: गांव में द्वीय राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत की यह पहली पेशकश आवाज जगजीत सिंह की है।
4: व्याज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह सुगम संगीत की अगली पेशकश आवाज तलत अजीज की है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: यह सुगम संगीत की अगली पेशकश आवाज गुलाम अली की है।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमिचलन है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10

बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। और अब खयाम साहब का संगीत मखदूम मोहिउद्दीन की रचना, युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज की फिल्म का नाम बाजार।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये गजल अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था बाजार। युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज के थे। संगीत खयाम साहब का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार।

0: खुदा खैर करे।
1: तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कर...

0: जंगली कहे
1: आज तो मची है धूम।
0: दिल

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सब

0: नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो।

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके छटके के साथ चुलबुले और निरारे अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

तुमसा ने देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं।

0: रात तो फिर क्या।
1: यूँ कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी की धुन पर उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है शुमार। राजकुमार
2: जाने वाले जाने

फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नई संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।

1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगीनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

0: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आई। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी फिल्म

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 6:51 पर आपसे फिर भेंट होगी।